Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

अब किसी ने कहा है कि यार अपनों के साथ ही तो लड़ाइयाँ होती है। वैसे बात तो सही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और नोटिस किया है कभी कि अक्सर उन्हीं लोगों से हम ज्यादा लड़ते हैं ना जो एक्चुअली हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, अपने होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना कि हर आर्ग्यूमेंट में हमें एक विनर चाहिए होता है। नहीं, मेरी बात सही है। अरे भाई, रिलेशनशिप है, डिबेट कॉम्पिटिशन थोड़ी है ना। मैं एक बहुत अच्छी लाइन ना मैंने पढ़ी जो कहती है कि अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज नेवर मी अगेंस्ट यू, है ना, इट्स ऑलवेज अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम। एंड ये सिर्फ ना हस्बैंड वाइफ या कपल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड, किसी के साथ भी हो सकती है। और कभी कभी सामने वाले को हराने से ज्यादा जरूरी होता है उसको समझना। अटैक करने के बजाय बात करो, अज्यूम करने के बजाय पूछ लो, और हर डिसएग्रीमेंट पे डिस्टेंस क्रिएट करने के बजाय थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश कर लो। बिकॉज हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है बाबू मशाए, कभी कभी इंसान को जीतना भी ज्यादा जरूरी होता है। बस इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग कतर, सिंपली आफरीन है, माइक से दिल तक बातें लेकर आती है। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Burga. हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का मतलब, मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल देखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: भाई मुखड़ा कम्प्लीट हो गया था, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं मिल रही थी।
1: अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं यार।
0: ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक।
1: अरे कहावत है यार।

देखो सबर का फल मीठा होता है और हर अच्छी चीज को ना थोड़ा सा समय लगता ही है। And GCC ka Unified Tourist Visa definitely falls in this category. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. और इसकी बात ना हम काफी टाइम से सुन रहे हैं. जानती हूँ मैं. In fact, 2023 में GCC countries ने Unified Tourist Visa को officially approve किया था. उसके बाद से 6 countries के बीच technical systems, passport authorities, immigration और regulatory requirements को coordinate करने का काम चल रहा था. अब ये visa exactly है क्या? पहले वो बता दूं मैं आपको सिंपल वर्ड्स में. आइडिया ये है कि एक यूनिफाइड टूरिस्ट वीजा के थ्रू ट्रैवलर्स कतर, सऊदी, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान को कवर कर सकते हैं, मेकिंग मल्टी कंट्री जीसीसी ट्रैवल मच इजियर. वैसे ही जैसे आप शंगन वीजा लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल करने के लिए, एक वीजा काफी सारी कंट्रीज कवर कर लेती है, बस उसी तरह से ये एक वीजा जीसीसी के 6 कंट्रीज को एक साथ कवर करेगी. और देखो 6 कंट्रीज को एक सिस्टम पर लाना है तो प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ना. That's obvious, but the good news is this that GCC Secretary General ke according प्रोजेक्ट अपने फाइनल टेक्निकल एंड रेगुलेटरी स्टेजेस में पहुंच चुका है. ऑफिशियल लॉन्च डेट और फाइनल रूल्स का अभी वक्त है. हाँ थोड़ा वक्त है ऑफकोर्स, और कोई बात नहीं, अपना वक्त ले लीजिए, लेकिन ये जो वीजा है ये जरूर जब आएगा ना तब देखना कि हमारे जो गल्फ कंट्री का टूरिज्म गेम भी ऊपर जाएगा एंड इट इज गोना बी सो बेनिफिशियल फॉर ऑल द ट्रैवलर्स, फॉर ऑल द बिजनेसेस आउट देयर. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मुझे 90s इंडी पॉप का ये गाना हाउ कैन वी भूल जा, नॉट पॉसिबल एट ऑल. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड क्या जबरदस्त मॉर्निंग कर देते हो आप लोग मेरी विथ योर ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग मैसेजेस. और पहले तो मैं ये बताऊँ, पहले बिफोर द किड्स गेट टू स्कूल, रीच स्कूल, वही बच्चों ने जो गुड मॉर्निंग भेजा है, आहान प्रसिद्ध और समृद्धि, ये है
1: good
0: इनका मैसेज. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग. और बताओ भाई, बच्चों की आवाज में इतना एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग जब सुनने मिले तो मेरी क्या आपकी भी जो मॉर्निंग है बड़ी गुडी गुडी सी ही जाएगी, राइट. वेल, बहुत सारे लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ चुके हैं. हरपाल संडो फ्रॉम दुखान, देन आई हैव योर अलीशान मैसेजिंग मी गुड मॉर्निंग, देन गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर द ग्रेट वाइब्स एंड एक्सलेंट म्यूजिक, होप योर डे इज ऑसम एज योर प्ले लिस्ट. यस, गुड मॉर्निंग इमरान. उसके अलावा यहाँ पर कौन है, आई थिंक सो चेतन का मैसेज है. सो वेल, बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस के बाद मेरा भी गुड मॉर्निंग ले लीजिए. और उसके बाद चलते हैं, जरा काम की बात देख लेते हैं, कतर का हालचाल क्या चल रहा है.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
3: वेदर अपडेट.
0: वेल, वेदर जो है कहता है मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम 34 डिग्री सेल्सियस. लगा था कुछ दिन पहले कि यार अब कम होते जा रहा है, द फील इज देयर, बट नहीं, दो तीन दिन से मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब तक कि इट्स टू अर्ली टू गेट एक्साइटेड फॉर द वेदर. थोड़ा टाइम और चाहिए वेदर को सेटल होने के लिए टू गेट इन टू देयर विंटर. विंटर इज फार, बट हाँ, गेट इन टू दैट प्लेजेंट वाला मोड. मीनवाइल हम इंतजार करेंगे अच्छे वाले वेदर का, लेकिन आपको मैं इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर होंगी फॉर सम गुड सॉन्ग्स, बट मैं यहां इंतजार कर रही हूं फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस. 5000 1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर. तो चलिए, बादशाह और निकिता गांधी की आवाज में एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची थॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
2: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ।
1: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi, it's hot.
3: The show was absolutely amazing.
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: The Mentalist Suhani Shah.

वेल आ गई मैं इस वक्त पर और कहाँ ही मिलूंगी, इधर ही तो मिलूंगी 89.6 FM पर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, मैं आ गई हूँ यहाँ पर अब कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से अब से हार्डली 15 दिन या समथिंग, यस 15 दिन के आसपास मैं सुहानी भी आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या, इवेंट के लिए जिसने भी टिकट निकाली है वो इंजॉय भी कर लेंगे। वक्त जो है ना ऐसे चुटकियों में ऐसे आगे बढ़ता है, बट होता क्या है ना कि अक्सर हम इवेंट्स कतर में आते रहते हैं एंड वी आर लाइक कि अच्छा ये म्यूजिकल है, ये वाला इवेंट, बट एक मेंटलिस्ट वाले जो इवेंट्स है इस तरह के बहुत ही कम आते हैं। एंड अनटिल एंड अनलेस आई थिंक सो, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि एक मेंटलिस्ट का क्या होता है एग्जैक्टली शो, देन आई थिंक सो यू शुड श्योरली कम हियर, बिकॉज सुहानी शाह इंडिया की एक बहुत ही नामचीन मेंटलिस्ट में से जानी जाती है। और देखिए, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब आप कोई सिंगिंग शो के लिए जाते हो या डांसिंग शो के लिए जाते हो, यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि हाँ अच्छा इसका गाने का शो है, अच्छा तो ये तो ये वाला गाना भी गाएगा, ये गाने गाएगा, सो यू are anticipating some kind of entertainment from there, but here it is an absolute surprise package, right? कि आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है और ये क्या होने वाला है। So यार, life में थोड़ा सा surprise and spice is absolutely essential, and that's why आ जाइए, 25th of September is the date, QNCC is the place, and Suhani Shah की टिकट्स अगर लेनी है आपको, then Q tickets पर मिल रही है, S City पर मिल रही है, that is Nunu City, then we are also on platinum list, और क्या चाहिए, ठीक है? विशाल मिश्रा की आवाज़ में अगला गाना, राहुल की आवाज़ में, as well, enjoy this on Mirchi, Mike से दिल तक आम ट्रेन के साथ, it's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ?
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे?
2: I'm joking, mama.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One, it's hot.
2: Mirchi Mornings पर आफरीन का साथ है आपके साथ और राइट ईयर मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ. साज भट्ट और सुभोष शर्मा की आवाज में आवारा पंटू का अगला गाना इंतजार कर रहा है आपके लिए ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

ब्यूटीफुल गाना यार, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, राइट इट ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट इट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट क्या चल रहा है हमारे कतर में, अब इवेंट्स का सिलसिला किस तरफ चला गया है। सो लेट मी टेल यू कि कतारा में अब शैल 2026 आज से शुरू होता है। एंड यस वी ऑल नो शेल, बट बिफोर यू से वो फाल्कनरी, दैट्स नॉट रियली माई थिंक, देन लेट मी टेल यू ये 10th एडिशन इज एक्चुअली द मोस्ट इंटरनेशनली डाइवर्स वन येट। 14 कंट्रीज, 155 एग्जिबिटर्स, ऑल कमिंग टुगेदर एट कतारा टिल 12th ऑफ सेप्टेम्बर। एंड यर्स वॉट इट गेट्स इंटरेस्टिंग, बताऊँ मैं आपको, Shell is no longer just about falcons and hunting. You've got live falcon auctions as well. Heritage experiences hone wale wahan par, artist painting, wilderness scenes, live competitions, plus the latest camping, outdoor and 4x4 gear and technology. Bahut sari cheeze hain. So aapko aisa lag raha hai ki wahan par Shell mein har saal jo hota hai Katara mein, wo it's only limited to falcons? No, bahut alag alag cheeze bhi hain. And maze ki baat to ye hai that admission is absolutely free. So even if you cannot tell one falcon from another, there's still plenty of things to explore there. And I think that's the fascinating part about events like Shell, that Qatar doesn't preserve its heritage by putting it behind glass. It keeps finding contemporary ways of letting people experience it. Mic se dil tak Afreen hai aapke saath. Do not miss the Shell 2026 from today till 12th of September at Qatara Cultural Village. अगला गाना श्रेया घोषाल की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स कमिंग अप नेक्स्ट, एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
3: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने ले गया,
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
2: यहाँ पे मशीन से है, कौन खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: बात सुन
2: माँ, मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया
3: बहन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
7: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
8: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

एयरलिफ्ट से ये गाना अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह की आवाज में फीचरिंग वन एंड ओनली अक्षय कुमार। वेल स्पीकिंग ऑफ अक्षय कुमार, कल मेरे साथ में कह सकती हूँ एक हादसा ही हो गया वो कुछ ऐसा कि मैंने कल शुरुआत की वेलकम टू द जंगल देखने की। 5 minutes आई कैन से या फिर 10 minutes डाउन द मूवी आई जस्ट सेड कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये टॉर्चर। हाउ कैसे लोगों ने ये मूवी जो है थिएटर में जाकर देखी है। अगर आपका कोई इरादा है ये मूवी अगर OTT पर भी देखने का, तो भाई बिल्कुल सोच समझ के, और बिल्कुल ये ऐसी टाइप की मूवी है जो आप 15 मिनट में भाप सकते हो कि भाई ये क्यों बनी है, क्यों है और ये कहाँ जा रही है। इतने सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं, बट यस आई हैव समवेयर फील के बॉलीवुड थोड़ी सी अच्छी मूवीज़ प्लीज़ लेकर आई है जिसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स हो। जैसे एयरलिफ्ट के बारे में अभी हमने यहाँ पर देखा, देन देयर वाज सो मेनी गुड मूवीज़ बैक देन यार, 2000 के एरा में, 90s के एरा में। सो कोई एक अच्छी स्टोरी, एंड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज़ और OTT, जहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स इतने अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेकर आते हैं एक सीज़न के बाद दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न, और फिर बाद में ये सीज़न को OTT सीरीज़ को सीधा थिएटर में लेके आते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर इतनी लव्ड सीरीज़ है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, पंकज त्रिपाठी एंड देन अली फजल, यस राइट, आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज विद हिज नेम। सो इतने सारे कैरेक्टर्स इसमें, एंड नाउ दिस मिर्ज़ापुर हैज बीन स्ट्रीमिंग ऑन OTT, तो नहीं अभी थिएटर्स में आ गई है एज अ मूवी बतौर, इन फैक्ट ये कतर में भी है थिएटर्स में। अगर आपको नहीं पता है देन आई थिंक सो इफ यू आर अ मिर्ज़ापुर फैन यू कैन गो एंड वॉच इट इन थिएटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, देव नेगी, नेहा कक्कड़ और मुनाली ठाकुर की आवाज में। येट अनदर गुड मूवी यार, एक्चुअली है ना वरुण धवन और आलिया भट्ट की ये मूवी मुझे तो अच्छी लगी थी। एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: रेडी
6: रेडी
5: टू लर्न।
6: यस
5: टू प्ले।
6: एब्सोल्युटली
5: टू ग्रो
6: विद मेजराती।
7: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: The show was absolutely amazing.
9: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: गाने ऐसे होते हैं जो ऐसे ही चुपके से तन्हाई में सुनकर सुकून के लिए होते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस यार. ऑफ कोर्स द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता जी की आवाज और कुमार सानू की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्रीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. और देखो क्या हाल है कि अभी आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि जो अगला मैं कॉन्टेस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए और जो डायलॉग ढूंढ कर लाई हूँ, मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए. जब ऐसा कोई डिफिकल्ट लेकर आती हूँ ना तो मुझे बड़ा मजा आता है. वेल, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन्हें तो बता दो, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का वक्त हो चला है जहाँ सीन सुना रही और आपने बताना है बॉस कौन सी मूवी का सीन है. सो हियर इट गोज.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: शादी मुबारक हो. तुम्हारा दूल्हा नीचे वेट कर रहा है गॉगल लटका.
3: कृष्ण सॉरी.
2: अच्छा, कुछ भी करो फिर आके सॉरी बोल. हाँ, कल तुम आके मेरे हाथ में वेडिंग कार्ड थमा दो और कह दो कि सॉरी. राइट,
3: लिसन, मैं ये बस शुभ आंटी को चुप करवाने के लिए कर रही
0: हूँ. ओके, नॉट अ पॉपुलर डायलॉग लेकिन आई थिंक सो अ वेरी पॉपुलर मूवी. 5000196 इज माय व्हाट्सएप नंबर. यू गॉट टू टेल मी कौन सी मूवी का ये सीन है. एंड जो बॉलीवुड के धुरंधर है ना इधर

उनके यहाँ पर मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। 5000 1896 कौन है जिसमें लड़के का नाम क्रिश है? हिंट तो दे दिया ना मैंने बॉस, बस बता दो फिर। एंड प्लेइंग वन ऑफ माई फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट ट्रैक, आई वुड से द नेक्स्ट ट्रैक, अरिजीत सिंह का पहला गाना है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और इनके साथ दे रहे हैं साइम भट्ट और मोहम्मद इरफान, मर्डर 2 का ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का। हाँ, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: The Mentalist, Suhani Shah.

0: बादशाह और शर्वी यादव की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेल, ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी निकला आप लोगों के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरीन है राइट हियर। और आपसे सवाल पूछा था मैंने लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का, जो काफी इजी लगा है आपको।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
0: सीन कहाँ चला गया मेरा? आप लोगों से यहाँ पर मैसेजेस देखने में मैं यहाँ पर अपना सीन जो है वो मैं भूल गई किधर रखी हूँ। हाँ, इधर मिल गया। सो आज का सीन ये था।
2: शादी मुबारक हो। तुम्हारा दूल्हा नीचे वेट कर रहा है गॉगल लटका।
3: कृष्ण सॉरी।
2: अच्छा, कुछ भी करो फिर आके सॉरी बोल। हाँ, कल तुम आके मेरे हाथ में वेडिंग कार्ड थमा दो और कह दो कि सॉरी, राइट?
3: लिसन, मैं ये बस शुभ आंटी को चुप करवाने के लिए कर रही हूँ।
2: तो इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहनी है?
0: All right, कौन सी मूवी का ये सीन है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये हमारे लिसनर्स बताएंगे यहाँ पर। हेलो हेलो, आपकी आवाज मुझे कम आ रही है यहाँ पर। वेल, आई थिंक सो दिस इज मनाली यार जिन्होंने मैसेज किया है और उनका जो ऑडियो है चल नहीं रहा है। बट दिस इज टू स्टेज जिसने सुलेमान ने यहाँ मैसेज करके बताया, खुमैल ने मैसेज करके बताया, सुल्तान नौरीन ने मैसेज करके बताया है, एंड देन सो मैनी मोर यार। और किसका भाई, अपना नाम लिखा करो। अब्दुल आहद का भी मैसेज आया है। देन आई हैव मोहसिन मैसेजिंग मी, एंड येस, इसी के साथ टू स्टेज आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की ये मूवी का अगला गाना कमिंग अप योर वे। अदिति सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूं?
1: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
1: Mirchi One. It's hot.
3: मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8 बजे की तरफ एग्जैक्टली और महमूद राघव चैतन्य और रुआ के की आवाज में अगला गाना कॉकटेल 2 से और मिर्ची शॉट
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: गोल्ड अपडेट।
1: वेल इट्स टाइम फॉर सम गोल्ड अपडेट्स एंड आज के जो गोल्ड अपडेट ये कहते हैं दैट पहले तो हम बात कर रहे हैं अबाउट पैम्प गोल्ड रेट्स और अलफरदान के पैम्प गोल्ड रेट्स जो है आज 1 ग्राम लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 593 कतरी रियाल वेर एज 5 ग्राम लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 2784 कतरी रियाल। बात करते हैं अबाउट 10 ग्राम बार की 5498 कतरी रियाल 1 आउंस बार इज फॉर 16998 कतरी रियाल एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 63129 कतरी रियाल। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकड़ू को
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह

श्रीधर कविता सेठ की आवाज में ये गाना फ्रॉम कॉकटेल द ओरिजिनल कॉकटेल और कुछ भी कहो बस ओरिजिनल वो ओरिजिनल होता है सीरियसली कितने भी आप सीक्वल्स निकाल ले अनटिल एंड अनलेस इट इज़ आई थिंक सो बाहुबली उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी सीक्वल में वो इम्पैक्ट हो पाता है. वेल बात हो रही बॉलीवुड की एक तरफ और नाउ इट्स टाइम कि हम जरा इम्पोर्टेंट पैसे वाली बात करें. वेल जैसे आई पे का आज एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट 1/3 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज आपको 25.92. वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.12 आपको 1/3 रियाल के बदले मिल रहे हैं. बांग्लादेशी टाका 33.67 वहीं 1/3 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं. श्रीलंकन रुपीज 90.06 एंड 1/3 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीज 41.30. ये आज के एक्सचेंज रेट घर भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला वन एंड ओनली माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: The mentalist Suhani Shah.

कुमार सानू की आवाज में ये गाना सुनने के बाद सच में कुछ ना कहने का ही मन करता है. यू जस्ट वॉन्ट टू बी इन दैट मेलोडी, इन दैट एरा, है ना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन, गो राइट हियर ऑन विजी मॉर्निंग्स. और इट्स टाइम टू ओपन माय मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. यस, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोलने का ये वक्त हो चला है. और आज मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से आफरीन के बहुत सारे यहाँ पर ये निकले हैं, क्या बोलते हैं, मूवी के स्टार कास्ट निकले हैं. मतलब बहुत सारे स्टार कास्ट सुनाने वाली हूँ और आपने गेस करना है कि बॉस ये मूवी है कौन सी. ठीक है, दिस माइट गेट अ लिटिल ट्रिकी बट आई नो यू विल गेट इट राइट. सो इसमें से पहला स्टार कास्ट है रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन. ओके, आई नो व्हाट यू थिंकिंग ऑफ, लेकिन रुक जाओ, सबर करो. इसमें प्रीति जिंदा भी है, ठीक है, और इसमें अर्जुन रामपाल भी है. ओके, और किरण खेर भी है. कौन सी मूवी की बात हो रही है यहाँ पर. 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. विच मूवी हैज दीज कैरेक्टर्स, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, प्रीति जिंता है, अर्जुन रामपाल भी है, किरण खेर भी है, एंड यू आर वंडरिंग विच मूवी इज दिस. और ऑल्सो मैंने इस शायद पूरे स्टारकास्ट का मेन कैरेक्टर बताया ही नहीं है पर्पसली. राइट, 5000 1896 इज माई नंबर. लेट मी सी हाउ मैनी पीपल कैन गेस दिस मूवी, जिसमें रानी मुखर्जी है, अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, प्रीति जिंता है. ठीक है, वेटिंग फॉर योर आंसर्स रियर. तब तक के लिए ये जो खूबसूरत गानों का सिलसिला जो चल रहा है, एंड प्रिंसन का भी ये कहना है कि यार क्या बढ़िया गाने बजा रहे हो, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस मॉर्निंग ब्राइट. सो यस, ये जो गाने का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए के एस चित्रा की आवाज़. Enjoy this track, Mike se Dil Tak Afreen ke saath on Mirchi. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: वेलकम बैक, मैं हूँ आफरीन आपके साथ एंड दैट वाज रोमी और तनिष बागची की आवाज में ये गाना। हाँ जी, और यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था जहाँ मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खुला। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, और इसमें से कोई मूवी के स्टारकास्ट निकला और आपने गेस करना था भाई आफरीन कौन सी मूवी की आखिर बात कर रही है, जिसमें प्रीति जिंटा भी थी, जिसमें रानी मुखर्जी भी थी, जिसमें अभिषेक बच्चन थे, अमिताभ बच्चन थे और किरण खेर थी। इससे मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं करण जौहर की मूवी हो सकती है। इतना बड़ा स्टारकास्ट और ये सारे कुछ ना अक्सर करण जौहर की मूवीज़ में ना होते रहते हैं। वेल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा और उसका जवाब कुछ ऐसा दिया है।
1: Hi Afreen, good
0: morning.
1: Hey,
0: hi, good morning.
1: This is Princeton here.
0: Haan ji, Princeton.
1: Firstly, thanks for playing those lovely songs.
0: Oh, great.
1: Those wonderful 90s memories. Regarding the game, the answer is Kabhi Alvida Na Kehna.
0: और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मैसेज किया है, मुआज़्ज़म का मैसेज है, ताहिर का मैसेज है, अर्श हैज मैसेज डाज, राज एंड देन Then we also have Mohammed Yusuf Khan messaging us the same thing that it is कभी अलविदा ना कहना। और मुझे अलविदा कहने के लिए अभी और एक घंटा बचे हैं, तब तक के लिए अच्छे वाले गानों का सिलसिला जो है वो बरकरार रखते हुए शंकर महादेवन शान महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में coming up next track, enjoy it on Mirchi, it's hot।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को बादशाह असीस कौर जुबिन नौटियाल की आवाज में लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

देखिए आजकल के बॉलीवुड मूवीज में अगर 5 से 6 गाने हो जाए तो वी फील के हाँ इट्स अ प्रॉपर म्यूजिकल एल्बम, लेकिन जस्ट इमेजिन वॉचिंग अ मूवी विद 72 सॉन्ग्स इन इट. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और बॉलीवुड और गानों का रिश्ता तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है. कभी कभी हमें मूवी की स्टोरीज जो है वो याद नहीं रहती, लेकिन ऑफ कोर्स गाने म्यूजिक एल्बम्स ना ये याद रह जाते हैं. एंड बॉलीवुड में एक्चुअली ऐसी काफ़ी सारी मूवीज है जिसमें ना हमारी सोच से भी ज़्यादा गाने हैं. पहले तो चालू करते हैं उसके साथ वो मूवीज़ जो आपको पता है कि हाँ इसमें तो ज़्यादा गाने हो सकते हैं. जैसे रॉक स्टार जैसी मूवीज़ में 14 गाने थे ये रॉकस्टार जैसी मूवी में, बिकॉज यार ये पूरी म्यूजिकल बेस्ड मूवी थी तो समझ में भी आता है. एंड देन कमिंग टू आर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फैमिली फिल्म्स एंड दैट इज हम आपके हैं कौन, इसमें भी 14 गाने थे. एंड मुझे जेन्युइनली लगता था कि यार हम आपके हैं कौन मस्ट बी टॉपिंग द लिस्ट यार, बट नहीं ऐसा नहीं है. यू नो वॉट, बैजू बावरा में 17 गाने थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रणवीर सिंह की एक मूवी है जिसमें 18 गाने थे एंड दैट वॉज गली बॉय. चलो ये भी समझ में आता है. नाउ डिड यू नो रणबीर कपूर की एक मूवी है जिसमें 21 सॉन्ग्स थे, क्योंकि उस मूवी में ना कॉन्वर्सेशन वर मोर लाइक सॉन्ग्स. नाउ यू आर थिंकिंग विच मूवी इज दिस, वेल दिस वॉज जग्गा जासूस. शायद आपने ये नहीं देखी होगी, लेकिन ये मूवी वॉज स्ट्रक्चर्ड ऑलमोस्ट लाइक अ म्यूजिकल. तो डायलॉग्स तक समटाइम्स सॉन्ग्स के थ्रू ही फ्लो किए जाते थे. बट अभी तो चलो 21 को साइड में रखते हैं, बिकॉज द फिल्म आई मेंशन्ड एट द बिगिनिंग विद अ स्टैगरिंग 72 सॉन्ग्स वॉज अ 1932 की मूवी इंद्रसभा. सोचिए 72 सॉन्ग्स इन वन मूवी, वॉट कुड इट बी. आई मीन आई कांट इवन इमेजिन. मतलब आज के हिसाब से एक फिल्म के अंदर पूरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट का कॉन्टेंट, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए. मीनवाइल आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची एक मजेदार ट्रिविया के साथ. और जहाँ जग्गा जासूस की मैंने बात की थी, तो चलिए अगला गाना अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाज में. Right here on Michigan's heart.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
2: थैंक यू.
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
3: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
2: मतलब क्या परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
2: मतलब ये कोई गेम है क्या? ये
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो, कच्चा
2: धागा,
3: रेस
2: लगा लो,
3: दस
2: पत्ते तोड़े,
3: एक
2: पत्ता कच्चा.
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े
2: दस पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
3: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू.
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव
4: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
2: यार ये कोई सुनेगा तो नहीं
4: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: नीड टू सेंड मनी होम? मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल्फा बॉन एक्सचेंज,
7: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स. विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और डाउनलोड द अल्फा बॉन एक्सचेंज ऐप नाउ. फॉर असिस्टेंस कॉल और व्हाट्सएप 4453777.
8: The show was absolutely amazing.
9: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
10: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

Wow, what a song. पता है क्या, कुछ जो आवाजें होती है हम उनकी एज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आवाज से कि इनकी ये एज होगी, एंड कुछ आवाजें ऐसी होती है कि उनकी कोई उम्र ही नहीं होती है और उनमें से आशा ताई की ऐसी एक आवाज थी. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड आज का दिन बड़ा ही खास है. 8th of September इज आशा भोसले जीज बर्थ एनिवर्सरी, एंड देयर इज रादर अ ब्यूटिफुल बॉलीवुड कनेक्शन टू दिस कोइंसिडेंस टू दिस डेट. आई वुड से कि एग्जैक्टली अब से 31 ईयर्स अगो 8th September 1995 में ही रंगीला मूवी रिलीज हुई थी. नाउ इमेजिन दिस, व्हेन आशा ताई सैंग तन्हा तन्हा रंगीला रे, जब उर्मिला के लिए उन्होंने ये गाने गाए थे, शी वॉज 62-year-old. कैन यू इमेजिन. और ये आवाज से बिल्कुल भी ऐसा लगता है. और स्क्रीन पर उर्मिला हैड दिस कम्प्लीटली यंग, फ्रेश, केयर फ्री एनर्जी, बट एक सेकेंड के लिए भी कहीं पर भी ऐसा ना लगा कि ये जो आवाज है ये कोई पुरानी जनरेशन की है. बट दैट वॉज द मैजिक ऑफ आशा ताई. इनफैक्ट ए आर रहमान ने कहा था कि जब वो म्यूजिक बना रहे थे फॉर रंगीला, दे वॉन्टेड अ कम्प्लीटली न्यू साउंड, एंड एवरी वन यूनानिमसली थॉट कि भाई आशा ताई से बेटर किसकी आवाज हो सकती है. There's another little piece of Bollywood history to this, ke Rangeela was A.R. Rahman's first original Hindi film soundtrack. So you had Rahman bringing this completely fresh sound into Hindi cinema. Mehboob Saab ke lyrics the, Urmila becoming the face of this new age Bollywood, and then this legendary voice that had already seen decades of Hindi cinema as effortlessly as it could, and that was of course Asha Tai. And that's the magic of Asha Tai. So well, generations changed, heroines changed, music changed, but somehow Asha Tai ki awaaz na hamesha aisa lagta hai ki it belongs to now. And iske saath aage badhte hue jo agla gana main sunane wali hu aapko Asha Tai ki awaaz mein, well this is the first song Rehman saab and Asha Tai had recorded together, so enjoy this track on Mirchi It's Hot.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: पापॉन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इतना रोमांटिक गाना है तो मैंने सोचा थोड़ा सा आज रोमांटिक थॉट ही क्यों ना हो जाए। अच्छा जानते हो एक इंसान आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है पता है? जब उससे मिलने के लिए मिलना ज़रूरी नहीं रहता, कभी किसी गाने में, कभी किसी जगह में, कभी बिना वजह किसी रैंडम थॉट में वो मिल ही जाता है। और बस आज इस रोमांटिक ख्याल पर आफरीन की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, मोहब्बत भरी नजरों में ख्वाब मिलेंगे, मोहब्बत भरी नजरों में ख्वाब मिलेंगे, कहीं कांटे तो कहीं गुलाब मिलेंगे। मेरे दिल के किताब को पढ़ के तो देखो, मेरे दिल के किताब को पढ़ के तो देखो, कहीं आपकी याद तो कहीं खुद आप मिलेंगे। हाय इस खूबसूरत से ख्याल के बाद एक बहुत ही प्यारा गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में कमिंग नेक्स्ट राइट फॉर यू। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

जानते हो ऐसा एक वक्त था जब किसी को कोई कहता ना लेट्स कीप इन टच, ऐसा नाम की ना कोई चीज थी ही नहीं, क्योंकि टच ना कभी कभी छूटता ही नहीं था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में ले जाते हुए, स्कूल की अगर 20 मिनट की रिसेस भी होती है ना, तो उसमें पूरा दिन की कहानी बताने के लिए ना उतना काफी होता था। एक टिफिन होता था स्कूल में, खाने वाले चार, फिर भी पेट भर जाता था। लड़ाई भी होती थी तो, लेकिन अगले बेल तक बजने तक ना पैचअप भी हो जाता था। और आज फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वीडियो कॉल्स है, एंड टेक्निकली इफ यू सी ना, वी हैव नेवर बीन मोर कनेक्टेड। फिर भी एक दोस्त से मिलने के लिए कैलेंडर्स मैच करने पड़ते हैं। लेट्स कैच अप सून, बोलते बोलते कभी कभी महीने निकल जाते हैं, और कॉन्वर्सेशंस कभी कभी तो बस सिर्फ रील्स फॉरवर्ड करने तक सिमट जाती है। तो शायद मेरे ख्याल से ये जो दूरियाँ हैं ना, ये किलोमीटर्स में नहीं बढ़ी है, ये जिंदगी में आपस में बढ़ गई है। और जिंदगी हमारी ना जैसे बिजी होते रहेगी, कैलेंडर्स हमारे और कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे, वक्त और कम मिलेगा, बट अपने लोगों के लिए थोड़ी सी जगह तो हम बना ही सकते हैं ना। तो ठीक है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि दूरियां बढ़ रही है तो हम उन्हें थोड़ा कम करते रहेंगे, कभी एक कॉल से, कभी एक मुलाकात से। और मेरी और आपकी ये दूरी, हाँ वो तो मैं रोज सुबह इस माइक के थ्रू कम करते रहूंगी। और माइक तक क्यों सीमित रहना है, सोशल मीडिया पर भी तो मिल सकते हैं। मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक। कल फिर इसी वक्त इसी फ्रीक्वेंसी यानी 89.6 पर मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, सायोनारा, और सुनते रहेगा मिर्ची इट्स हॉट।

0: अब देखो तो हम बाहर से, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है।
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
1: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती। क्या करूं?
2: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं, होटो पे अच्छी लगती है।
3: साले को खोपड़ी तोड़, साले।

Well, Arijit Singh ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track. It is an absolute power pack track. And ek baat batane ki koshish karun, apne some of the most favorite tracks ki baat karun, to usme ye ek gaana zarur aata hai. Mirchi Anshu. Very good morning. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, Zindagi Mein Mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek bar phir se aa chuki hu. And sach kahun, aaj jab maine subah subah ye gaana suna, kahin na kahin ye jo gaana hai and iske piche ki jitni bhi, you know, wo filming hai, picturization hai, wo meri life ki kahani ko definitely define karta hai. Now for the people who are already aware of what all I do, so jahan pe ek taraf har din main radio mein aapke saath connect karti hu, wahin dusri taraf I travel a lot. Now I get to travel because I do host a lot of global shows and events. तो उसके कारण जो मुझे ट्रैवल करना होता है, ये जो जर्नी है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड तभी तो मैंने कहा कि ये गाना जो है मेरी ज़िंदगी की कहानी को बयां करने की कोशिश करता है. एंड खासकर जब भी मैं आसमानों में होती हूँ ना, व्हेनेवर आई फ्लाई, पता नहीं क्यों, बट बादलों को देखना बड़ा अच्छा लगता है. वो बादलों के बीच से गुजरना काफ़ी अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि इस आसमान के ऊपर भी कोई आसमान है. तो इसी तरह अगर अपनी ज़िंदगी को देखने की कोशिश करें, तो हम अगर किसी भी बात को विजुअलाइज़ करने की कोशिश करें, तो एक बात समझ में आएगी कि भाई हम जैसे स्टेट में ना, हमें लगता है कि यार ये हमारी ज़िंदगी है और इस मंजिल को पाना है. एंड जब हम वहाँ पर पहुँचते तो लगता है इसके भी ऊपर कुछ है अचीव करने के लिए. वैसे अगर मैं ऑपोजिट साइड को देखने की कोशिश करूँ, जब लगे कि ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, तो मुड़कर किसी और की ज़िंदगी को देखने की कोशिश करना, लगेगा यार इसके भी ऊपर कुछ और हो सकता है. तो बस जो भी आपने अपने लिए लाइफ में एक लिमिट सेट की हुई है, याद रखना कि लाइफ में लिमिटेशन नाम की चीज़ होती नहीं है यार. खुशी हो, गम हो, ज़िंदगी का कैसा भी फेस हो, यह ना एक साइकिल एक चक्कर में चलता ही रहता है. एंड हर एक पड़ाव को जैसे जैसे आप पार करते जाते हैं, ऊपर में एक और पड़ाव जो है ना वो आते जाता है. तो बस इसलिए ज़रूरी है कि पड़ाव पार हम करते रहें, लेकिन आज प्रेजेंट का जो पल है, मोमेंट है, आसमान के साथ, उन बादलों के साथ खुलकर चलते रहें, जीते रहें, उड़ते रहें एंड मस्ती में हर एक दिन को बिताते रहें. चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं आज की मीठी मिर्ची की शुरुआत. अगर मेरे साथ कनेक्टेड है तो फटाफट से गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेजने का वक्त जो है वो आ चला है. 5000 1896 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म कहो ना प्यार है ये अगला गाना फीचरिंग ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल. राइट हियर फॉर यू. एंजॉय. बंदी का नाम अंश.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दी है, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: तू चोरी करने के लिए गया?
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
2: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: मेरी बात सुन,
2: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
3: मेरी बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live in

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म लापता लेडीज। ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अच्छे वक्त का पता ठिकाना मैं आपको बता दूं, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:28।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: या शायद ये भी आपने कभी ना कभी सुना होगा कि कुछ सफर हम तय करते हैं और कुछ सफर के लिए ऊपर वाला हमें चुनता है। मिर्ची अंशु। और अगर एक ऐसे सफर की बात करूं जहां उसके बुलावे के बिना हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो शायद सबसे पहले इस वक्त मेरे जहन में कोई शब्द, कोई लफ्ज आता है, तो वो है हज। क्योंकि हज का सफर भी शायद उन्हीं बेहद खास सफरों में से एक है जहां मंजिल से ज्यादा अगर कुछ मायने रखती है तो वो है इबादत और नियत। तो चलिए इस वक्त आप सबके बीच एक अच्छी खबर जो है मैं पेश कर ही दूं। अगर आपको लगता है कि साल 2027 में हज पर जाने की आपकी ख्वाहिश है, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इस वक्त अगर किसी के पास है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स, जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि कतर के जितने भी सिटीजन्स और रेसिडेंट्स हैं जो हज 2027 की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो भाई ध्यान रखें, संडे 20 सितंबर रात ठीक 12 बजे से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे एंड ये कंटिन्यूड रहेंगे अंटिल 20 अक्टूबर 2020। लेकिन जाना कहाँ होगा, ऑफिशियल हज पोर्टल के थ्रू ही ये सब कुछ किया जा सकेगा। तो डेट्स जो है वो ध्यान रखें, 20th to 20th यानी कि सितंबर टू अक्टूबर। बाकी दिल में दुआ और ऊपर वाले पे बस भरोसा रखना है। यार कहते हैं ना कि इबादत में लफ्जों का होना जरूरी नहीं, हर दुआ का सुनाई देना भी जरूरी नहीं, अगर दिल सच्चा हो तो फासले मिट जाते हैं। ऊपर वाले तक पहुंचने के लिए रास्तों का होना जरूरी नहीं। तो अगर बात अच्छी लगी तो जल्दी से एक वाह वाह हो जाए। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर थैंक यू गुड मॉर्निंग मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल सुबोध शर्मा की आवाज, अगला प्यारा सा गाना आप तक, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।
2: तो फिर

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: परंपरा टंडन की खूबसूरत सी आवाज उन्होंने लवली ट्रैक फ्रॉम द फिल्म दो पति फीचरिंग कृति सैनन एंड शाहिर शेख। एक प्यारा सा गाना तो मैंने सुना दिया, लेकिन आज का दिन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज को कन्वे करता है, जरा उसकी बात भी हो जाए।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखिए, अगर आपने जैनिज्म के बारे में सुना है या जैनियों को जानते हैं, क्योंकि मैं खुद जैन हूँ, हमारे लिए आज का दिन जो है ना यार, बड़ा खास है। बिकॉज अगर आज से हमारे लिए कुछ शुरू हो रहा है, सो दैट इज पर्युषण। पर्युषण महापर्व के नाम से हम इसे कहते हैं। अगले 8 दिन जो है हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़े मैसेज या पैगाम को लेकर आ रहे हैं। चलिए, इसका जो एसेंस है मैं आज आपके बीच पेश करती हूँ। देखिए, बात इतनी है ना कि चाहे आप किसी भी फेथ को क्यों ना फॉलो करते हो, इसका एक मैसेज हर जगह आपको सिमिलर मिलेगा, जो कि पर्युषण का है, विच इज संयम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। यार, ह्यूमन माइंड जो है ना, बड़ा कमाल है। हम अक्सर लाइफ में दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन शायद अगर सबसे मुश्किल जिंदगी में कुछ है तो वह है खुद पर कंट्रोल रख पाना, अपने गुस्से पर, अपनी जुबान पर, अपनी इच्छाओं पर, एंड खासकर अपने ईगो पर। एंड दैट इन ए सेंस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल मैसेजेस ऑफ पर्युषण। That pause, look within, simplify, forgive, and most importantly, become a little better than you were yesterday. And अगर ये पूरे के पूरे मैसेज को आप देखने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं रमजान यानी कि रमदान का एसेंस भी हमें यही कहता है। यार देखिए, दुनिया में खूबसूरती कितनी कमाल है ना, कि चाहे ट्रेडिशंस अलग हैं, बिलीव्स अलग हैं, प्रैक्टिसेस अलग हैं, लेकिन एक ब्यूटिफुल ह्यूमन मैसेज जो है हर जगह हमें सिमिलर नजर आता है। तो बस पर्युषण महापर्व के तौर पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी में चाहे कम बोलें लेकिन सही बोलें, कम चाहें लेकिन ज्यादा बांटें, जिंदगी में गुस्से की जगह पेशेंस, ईगो की जगह ह्यूमिलिटी, एंड शिकायत की जगह बस फॉरगिवनेस को अडैप्ट एंड अडॉप्ट करने की कोशिश करें, फिर देखें जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल अपने आप कैसे आता है। बात अच्छी लगी तो मुझे पर्युषण की बधाई जरूर देना। जोश, पर्युषण महापर्व के तौर पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी में चाहे कम बोलें लेकिन सही बोलें, कम चाहें लेकिन ज्यादा बांटें, जिंदगी में गुस्से की जगह पेशेंस, ईगो की जगह ह्यूमिलिटी, एंड शिकायत की जगह बस फॉरगिवनेस को अडैप्ट एंड अडॉप्ट करने की कोशिश करें, फिर देखें जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल अपने आप कैसे आता।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: The Mentalist Suhani Shah.

0: चौहान की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2। ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब एक ऐसी धुन में आपके बीच पहुंचाना चाहूंगी विच इज लिटरली हार्ट मेल्टिंग।
1: मिर्ची अंशु।
0: यार मैंने ना ये बात आपसे कई दफ़ा कही है कि मैं उस एक ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ जो किसी भी फिल्म में जहाँ पे एक तरफ उसकी स्टोरी से कनेक्ट करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कहीं ना कहीं उसके म्यूज़िक से कनेक्ट करती हूँ। यू नो, एक फिल्म के गाने, उन गानों के अल्फाज, उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक, नाउ दिस इज़ समथिंग दैट रियली गोज़ एंड गेट्स इनटू माय हार्ट एंड माय माइंड। तो चूंकि मैं इतनी बड़ी वाली म्यूज़िक लवर हूँ, कहीं ना कहीं धुन जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा खुद से कनेक्टेड करके रखती है। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसी धुन जिससे मैं खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ मैं आप तक पहुँचाऊँगी। आपको उस धुन को सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड बस मुझे ये बताना है कि ये धुन अगर आपने सुनी तो किस गाने में सुनी एंड साथ ही किस फिल्म से है। नाउ दिस इज गेटिंग रियली एक्साइटिंग बिकॉज आपके जवाब मुझे बड़ा मजा देते हैं। 5000 1896 5000 1896। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिप्लाइज। इंस्टाग्राम Mirchi1 Qatar एंड Mirchi Anshu। एंड लिसन, आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। हियर वी गो। राइट हियर। अब तो इतना सुनने के बाद तो पहचान ही जाना चाहिए। क्या क्या एक बार फिर से सुना दो यार, इतना आसान है इसे फिर से क्या सुनाऊं। चलो ठीक है, सिंस किसी की दरख्वास्त गुजारिश आई है तो एक बार सुना ही देते हैं। सुनाऊं पक्का? सो हियर यू गो। बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, फटाफट से पहचानो एंड बताओ ये है तो है कौन सा गाना है, साथ ही किस फिल्म से है। 5000 1896। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल मोहम्मद फैज की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना आपके रास्ते मेरे दिल से। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: पलमर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं ठीक 11 एंड वक्त हो चला है कि आप तक एक बहुत ही प्यारा सा गाना मैं आप तक पहुंचाऊं टू ऑल दी डैड्स हु आर लिसनिंग टू अस एट द मोमेंट. यू नो, एक बच्चे के दिल में जो ख्याल है ना, शायद इससे खूबसूरत तरह से उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता. शान एंड वनिका नायक की आवाज़ में अगला गाना मैं आप तक पेश करती हूँ. खासकर जितने भी पापा हैं उनको डेडिकेटेड, एंड अगर गाना अच्छा लगे तो मुझे एक थैंक यू मैसेज ज़रूर भेजना 5000 1896 पर. हियर यू गो, बंदी का नाम अंशु.

0: Well, Mohit Chauhan ki khubsurat si awaaz Tarannum Malik ka saath, and what a lovely track it is from the film Ek Tha Tiger. Ye pyara sa gaana to maine aapko suna diya, lekin ab us dhun ki baat ho jiski jhalak maine aap tak pahunchayi. Well, अब से कुछ देर पहले एक आइकॉनिक धुन मैंने आपके बीच पेश की थी ना, आपको आइडेंटिफाई कर बस ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से, और साथ में मैंने ये भी कहा था कि ब्राउनी पॉइंट जो है मिलेंगे और पक्का मिलेंगे अगर आपने गाना जो है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया. एंड आई एम सो मेस्मराइज्ड टू सी दैट सो मेनी ऑफ यू हैव आइडेंटिफाइड इट एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब आप जो है ना मेरी तरह पूरी तरह से म्यूजिक के बफ मूवी के अलावा. चलिए एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं ये धुन फिर से सुनाती हूँ, पेश करती हूँ. अगर लगे अभी भी आइडेंटिफाई कर लिया जल्दी से करेक्ट आंसर भेजना 5000 1896 पर, 5000 1896 पर. विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर एंड मिर्ची आंशु. डोंट फॉरगेट टू फॉलो. This is indeed so heartwarming, man. So I just love this music.
1: This is Mohammad Akhtar. The name of the movie is Jannat Part 1. The song is Zara Sa Dil Mein De Jagat, sung by KK. The movie is directed by Mohit Puri, produced under Vishesh production of Mahesh Bhatt, and protagonist are Pran Hassan. Thank you.
2: Hi Anshu, this is Altaf. The movie name is Jannat.
3: Hi, good morning. This is Rohit. Dhun ka naam hai Zara Sa, aur movie Jannat se hai. Thank you. Mirchi, it's hot.
0: थैंक यू सो वेरी मच. आप सबका जो रिप्लाई है ये सुपर डुपर हॉट है. एब्सोल्युटली आपने जो कहा बिल्कुल सही, इट इज जन्नत एंड द सॉन्ग इज द ट्रैक इज जरा. यार एक बात बताऊं, जरा सा वक्त, जरा सी केयर, जरा सा अपनापन और किसी के दिल में जरा सी जगह, या समटाइम्स ये जो जरा सा शब्द है ना ये हमारे लिए सब कुछ बन जाता है. लेकिन यहाँ पर अगर जरा सा इस गाने की बात करूँ तो जन्नत का ये आइकॉनिक सा गाना एक्चुअल में जन्नत के लिए बना ही नहीं था. इट वॉज ओरिजिनली रिकॉर्डेड फॉर आवारापन, बट वहाँ सिचुएशन में ये फिट नहीं हुआ तो डायरेक्टर कुणाल देशमुख को ये गाना इतना पसंद आया कि जब उन्होंने जन्नत बनाई ही ब्रॉट द सॉन्ग इनटू द फिल्म. टेम्पो चेंज हुआ एंड फिर जो हुआ वो हम सब जानते हैं. प्रीतम का म्यूजिक, सैयद कादरी के ये शब्द एंड साथ केके की आवाज. मैन 2008 में गाया ये गाना, इतने सालों के बाद भी सुनो तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो अब भी लेटेस्ट रिलीज है. कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों की अपनी डेस्टिनी अलग होती है. जिस फिल्म के लिए गाना बना वहाँ जगह मिली नहीं, लेकिन जहाँ पे जरा सी जगह मिली वहीं उसने हम सबके दिल में हमेशा के लिए जगह बना ही ली. तो अगर आपको लगता है कि आपको ये गाना उतना ही पसंद है जितना मुझे, तो जरा सा थैंक यू हो जाए. 5000 1896 waiting for your messages. Meanwhile, upcoming next is one of my most favorite tracks by KK, जरा सा.

0: Milci.
1: Iska bana, uska bana, saka bana.
2: Ja bana.
1: Burga, burga. La vid bala burga.
2: Milci burga.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: वेलकम सचदेव की खूबसूरती आवाज मनशील गुजराल का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. क्या प्यारा सा गाना है. मैं सच कह रही हूँ, गानों में जो ताकत है, उस धुन में, उन लफ्ज़ों में जो खूबसूरती है ना, कि आपको एहसासों को फील करने में मजबूर कर दें, शायद ही किसी और चीज़ में. यार वैसे एक बात बताऊँ, महसूस करने की अगर हम बात करें ना, तो कोई और चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट एंड रिलेट करती हूँ, एंड वो सारी चीज़ें हैं यार जो मेरी मम्मी से जुड़ी हुई हैं. वो आज के डेट में दुनिया में मेरे साथ है नहीं, लेकिन उनकी साड़ियाँ, उनके कपड़े, उनके गहने एंड खासकर उनकी ज्वेलरी. क्योंकि क्या है ना, साड़ियाँ कपड़े तो एक वक्त के बाद शायद फेड भी हो जाते हैं, लेकिन ज्वेलरी कहते हैं ना, वो ऐसी चीज़ है जो हमेशा ट्रेडिशन के तौर पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बस पहुँचती जाती है, चलती जाती है. तो आज भी जब मम्मी की कोई जेवर मैं पहनती हूँ या उन्हें फील करने की कोशिश करती हूँ, एक अलग सी खुशी मिलती है यार. ऐसा लगता है कि आज भी उनका कोई अंश जो है ना, वो मेरे साथ है. इसीलिए तो कहते हैं सोना है सदा के लिए. जरा देखें आज अल्फरदान एक्सचेंज में गोल्ड अपडेट क्या कहता है. गोल्ड अपडेट. भाई साहब, इतना कहना चाहूंगी कि अच्छे गोल्ड रेट्स का ना इस वक्त तगड़ा बोल वाला है. तो अगर लग रहा है कि सोने की खरीदी करनी है, सो लेट मी टेल यू, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स दैट यू कैन गेट. अगर आज आप पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार अपने घर लाना चाहेंगे, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 593. वहीं 5 ग्राम्स की अगर मैं बात करूँ, इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 2784. 10 ग्राम्स की बात करूँ, प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 5498. 1 ounce इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 16998. एंड भैया एक बड़ा बार खरीदना यानी कि 10 तोले की बात करें, सो इट इज प्राइस्ड एट 63,129 कतरी रियाल्स. चलिए खरीदारी की तैयारी जो है आप और हम मिलकर शुरू करें. मीनवाइल गोल्ड अपडेट्स इज ब्रॉट टू यू बाय
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर. बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे. विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: विशाल मिश्रा की आवाज़ सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड बिल्कुल मैंने दिल से ये मान लिया कि आपने ये गाना मुझे डेडिकेट किया। आपके दिल की ख्वाहिशें बातें मैं इतनी अच्छी तरह से समझती हूँ कि देखें ना, आधा दिमाग पढ़ने का काम तो मैं ही कर रही हूँ यार।
1: मिर्ची अंशु
0: ये मत बोलना या ये मत सोचना कि अंशु ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो, तुम्हारे लिए ऐसा कोई गाना हमने प्ले नहीं किया था। ठीक है यार, अगर ऐसा कुछ है तो जिसके लिए प्ले किया, जिसके बारे में सोच रहे थे उसको सोच के आप खुश हो जाओ। अब मैं तो एक ऐसी शख्सियत की बात कर लूँ जो सही मायने में सही तरह से आपका दिमाग पढ़ना जानती है, मैं जानू या ना जानू, आपकी घर वाली जाने या ना जाने। ऑल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की बात करें, मैजिशियन की बात करें, तो उसमें अगर किसी का नाम आता है तो वो है सुहानी शाह। जितना तुम्हारी टीचर और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आंसर्स नहीं रटवाए थे ना, उनसे ज्यादा जो है इस वक्त सुहानी शाह का नाम मैं तुम्हें रटवा चुकी हूं। अगर अभी भी लगता है कि तुम इसे नहीं जानते, जाओ यार सोशल मीडिया खोलो, इतनी मुफ्त की स्क्रॉलिंग करते हो, जरा काम की स्क्रॉलिंग कर लो एंड देखो ये बंदी है तो है कौन एंड क्या कमाल तरह से चारों खाने चित्त करना ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस एट ऑल, वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड एवर हैव इन द वर्ल्ड ऑफ मेंटलिज्म एंड मैजिक। 25th ऑफ सितंबर एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, एंड इफ यू थिंक यू हैवंट booked your tickets yet, so what are you waiting for? Head over to Q Tickets Platinum List or Snoonu City right away and grab your tickets now. अच्छी चीजें अच्छी बातें हर बार इतनी आसानी से मिल जाए मुमकिन नहीं, तो जब सारी फीसिबिलिटी हो रही है मिल रही है ना यार, तो उस मौके को अपने हाथ से जाने ना दो। मिलेंगे यार, मिलके मस्ती करेंगे, मिर्ची की टीम रहेगी, कमाल धमाल होगा और ज्यादा मजा आएगा। देखेंगे आपको कहां सुहानी शाह लाइव इन दोहा में। मीनवाइल फहीम अब्दुल्ला की आवाज में एक अगला सोलफुल सा प्यारा सा गाना आपके रास्ते अंशु के दिल से। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: मिलके मस्ती करेंगे, मिर्ची की टीम रहेगी, कमाल धमाल होगा और ज्यादा मजा आएगा। देखेंगे आपको कहां सुहानी शाह लाइव इन दोहा में। मीनवाइल फहीम अब्दुल्ला की आवाज में एक अगला सोलफुल सा प्यारा सा गाना आपके रास्ते अंशु के दिल से। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।
1: तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई

0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: अरे दोहा वालों, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ तो तड़कता भड़कता बिल्कुल कड़क होने वाला है।
1: मिर्ची अंशु
0: हाला हाला, वेलकमिंग यू अवे इस कड़क द ग्रेट इंडियन गिग, वन स्टेज, फोर बैंड, 7 hours ऑफ नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, यानी कि म्यूजिक का फुल ऑन धमाका। 11th ऑफ सितंबर, अल मयासा थिएटर, कदर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। वाले इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम्हारे अंदर डांस का जितना भी कीड़ा है ना, ये कूट कूट के बाहर निकलेगा, क्योंकि तुम और हम मिलकर तैयार हैं टू ग्रूव विद आदर्श, अमृता, फेजो, पूजा एंड फाइनली एक ऐसा नाम जिसके बगैर हर एक पार्टी जो है वो अधूरी है। Absolutely, Benny Dayal, and we couldn't be more excited. Well, Kadak, the great Indian gig presented by Danat Al Bahar and Qatar Living. So, yaad rahe, 11th of September, Al Mayasa Theatre, Qatar National Convention Center. Look forward to seeing you all. Enjoy. Bandi ka naam, Anshu.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है। रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: आवाज श्रेया घोषाल का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, क्या खूबसूरत, क्या प्यारा सा गाना। मतलब कुछ गाने जो होते हैं ना आपको मदहोश कर दें, तो मैं सच कहूँ ये जो कॉम्बिनेशन है दिस ट्रैक, आई एब्सोल्युटली लिटरली फेल इन लव विद दिस वन।
1: मिर्ची अंशु
0: हला, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मी थी मिर्ची, एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। मिर्ची घड़ी में वक्त की अगर मैं बात करूं तो हो चुके हैं 12:06, एंड चलिए एक काम करते हैं कि क्यों ना 12 बज चुके हैं, मतलब आपकी भूख का इंतजाम जो है वो मैं कर दूं यानी कि कोई ऐसी डिश की याद मैं आपको जरूर दिलाऊं जो आपकी भूख को बढ़ाने का काम करेगी। भाई साहब इतना मैं कह रही हूं तो समझ जाए एक बार फिर से, खाने पे पहेली का वक्त जो है वो आ चला है जिसे आपने बुझानी है, साथ ही अपनी भूख को बढ़ाना है। अगर पहेली बुझाते ही अगर आपको पता चल जाए कि ये कौन सी डिश है जिसकी कहानी आज मैंने अपनी जुबानी बयां की, तो फटाफट से आप करेक्ट आंसर भेजेंगे 5000186 पर, 5000186। वी विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, एंड लिसन आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। तो सुने, मुंबई की गलियों का मैं स्टार हूँ, छोटा सा पैकेट स्वाद में दमदार हूँ, भाई बीच में कुछ तो है साथ में चटनी की छाव है, बताओ जरा कौन हूँ मैं। ये कौन है जिसके बीच में कोई तो स्टफिंग आती है, चटनियों का बड़ा ही गजब का मेल होता है, मुंबई की गलियों से ये स्टार कहलाता है, इतनी इजी सी चीज ना पहचानी जानी तो क्या ही खाना पीना होना। नहीं नहीं यार, जल्दी जल्दी बताओ 5000186, मुंबई के आइकॉनिक स्टार कौन है। अरिजीत सिंह की आवाज, पलक मुच्छल का साथ, एंड ये आपकी और मेरी कहानी, ये अगला गाना एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirci. Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: I'm very fine, thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ. नहीं लगता उसका.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: लगे हुए गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट,
1: पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट.
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो.
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ से बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: मिस्टर
2: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कोई सुनेगा?
2: सर ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

पहेली के पीछे छिपी थी कोई तो आइकॉनिक डिश की कहानी जो मुंबई की गलियों से आती है। तो बस मैंने आपसे यही कहा था कि पहेली को बुझाना है, बस मुझे ये बताना है कि ये डिश है तो है कौन सी। बहुत सारे रिप्लाईज आए लेकिन आज मैक्सिमम लोगों ने लिखकर भेजा। जब आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भेजते हैं तो खुशी ज़्यादा होती है, लेकिन कोई ना, जवाब आया इस बात की खुशी और भी ज़्यादा है। चलिए काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए पहेली मैं फिर से सुना दूं। अगर लगे कि अभी भी सुनते सुनते पहचान लिया तो जल्दी से करेक्ट आंसर भेजना 5000 1896 पर। मुंबई की गलियों का मैं हूँ स्टार, छोटा सा पैकेट लेकिन स्वाद में दमदार। भाई बीच में कोई तो वटाटा है, साथ में चटनी की छाव। बताओ जरा कौन हूँ मैं, भाई इसका नाम है वड़ा पाव। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू रिदा, हेमंत, प्रिंसी एंड टू ऑल द वंडरफुल पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड एंड रिप्लाइड, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ कांस्टेंट लिसनर एंड आवर फॉरएवर सपोर्टर्स। वेल, अगर वड़ा पाव की मैं इस वक्त बात करूं तो भाई एक बात तो समझ जाओ कि अगर तुम मुंबई जाओ और वड़ा पाव ना खाओ तो समझ जाओ तुम्हारी ट्रिप जो है ना पूरी तरह से अधूरी है। तय ये। बट एक इंटरेस्टिंग सवाल, ये वड़ा पाव जो है ये आया कहाँ से? भाई कहानी हमें लेकर जाती है 1960s के मुंबई में, जहाँ दादर के आसपास अशोक वैद्या को वाइडली क्रेडिट दिया जाता है वड़ा पाव को पॉपुलर करने के लिए। देखिए बात इतनी है कि उस वक्त परेल और वर्ली की टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वाले हजारों वर्कर्स को चाहिए था कुछ ऐसा जो सस्ता हो, पेट भर दे और चलते चलते खाया जा सके। तो बस गर्मा गर्म वटाटा वड़ा गया पाव के बीच, साथ में चटनी और मिर्ची, एंड मुंबई को मिल गया उसका नया आइकॉनिक स्ट्रीट फूड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वड़ा पाव। तो अगर लगे कि अगली बार मुंबई में हूँ तो दादर का जो अशोक वड़ा पाव है ये मैंने डेफिनेटली ट्राई किया, इसलिए मैं वाउच कर रही हूँ। भाई इसमें इतिहास भी छुपा है, दमदार वड़ा पाव का टेस्ट भी यहाँ मिलेगा, तो जाना है, ये जरूर ट्राई करके आना है। वैसे जितने भी मुंबई वाले मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इज देयर एनी अदर प्लेस दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड वेयर एंड आई शुड surely try vada pav at 5001896 5001896। I'm eagerly waiting for your messages. Amchi Mumbai, जवाब दो यार। बी प्राग की आवाज जसलीन रॉयल के साथ शेरशाह फिल्म से मीनवाइल के हार्ट टचिंग सा गाना आप तक। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: अदनान सामी की क्या खूबसूरत सी आवाज है। सच कह रही हूँ, ये वही गाना है, ये वही दौर है बेसिकली जब गाने को सुनने से ज्यादा हम बेसब्र होकर वेट किया करते थे कि कब टेलीविजन में उस म्यूजिक चैनल में इस गाने का वीडियो आएगा।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, मतलब वक्त, दौर, जमाना सब कुछ कितना बदल चुका है ना। मतलब आज की डेट में जब सारी की सारी चीजें हमारी फिंगर टिप पे अवेलेबल हैं, जब जो गाना सुनना है फटाक से गाड़ी में लगाया, घर पे लगाया, मोबाइल पे लगाया, सुन लिया। लेकिन एक बात बताएं कि आज की डेट में कितनी बार ऐसा होता है कि आप गाने को सुनने से ज्यादा उसके वीडियो का इंतजार करते हैं? हार्डली यार। या कितने गानों का तो आपको पिक्चराइजेशन याद भी हो, चलिए मैं आपसे ये पूछती हूँ। लेकिन अगर 90s की बात करें, ये गाने जो मैंने अभी आपको सुनाए उस दौर की बात करें, भाई साहब हम ना बेसब्र होकर वेट करते थे कि गाना सिर्फ सुनना नहीं है, उसकी वीडियो को भी फील करना है, उसे महसूस करना है, एंजॉय करना है। चलो जी, इस वक्त लेकिन गाना ना सही, कुछ और जो है मैं आपको महसूस करा ही दूँ। जरा बताऊँ क्या? बस यही महसूस करा दूं कि बेटा अगर तुमने कल कल पैसे भेजे हैं एंड अगर आज पैसा तुम्हारे अकाउंट पे नहीं है तो एक्सचेंज का रेट जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। अब महसूस करो उस दोस्त के लिए जिसने अभी तक अपने अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं। और अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज़ 25.94, पाकिस्तानी रुपीज़ 76.12, नेपाली रुपीज़ 41.30, बांग्लादेशी टाका 33.68 एंड साथ ही लंकन रुपीज़ मचाते हुए डंका 90.05। घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का। हाँ, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

यार हम ना बड़े कमाल लोग हैं। देखो ऐसे तो मुझे कोई भी रिक्रिएशन की अगर मैं बात करूँ, रीमेक की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनलिटी पूरी खत्म हो गई है क्या। मतलब क्या ऐसे कोई मेकर्स नहीं है, प्रोड्यूसर्स नहीं है जो ओरिजिनल अपना खुद का गाना बना सकें। लेकिन देखो अब यहाँ पे मेरा दिमाग कैसे खेलता है। अगर ऐसे कोई गाने का रीमेक वर्जन आए जिसे मैं अरसों पहले सुना करती थी, ना चाहे एक बार फिर से उसी अंदाज में, बस शायद सिंगर की आवाज़ बदल जाए या थोड़ा बहुत कुछ चेंज आ जाए, अगर वो गाना दोबारा आता है ना तो मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे केके के गाने जो हैं, वारापन के गाने जो हैं, वारापन टू में एक बार फिर से रूटीन में वापस आए, एंड आई एम लविंग इट, आई एम लाइकिंग इट। जैसे ये जहन नसीब का रिक्रिएटेड वर्जन है, आई एम लविंग इट, क्योंकि ये वो गाने जो एक दौर में मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुना करती थी, लेकिन ऑफ लेट कहीं ना कहीं इन गानों से वास्ता जो है ना थोड़ा सा खो सा गया, कम सा हो गया। तो अब ऐसा लग रहा है एक रिफ्रेश्ड एनर्जी, रिचार्ज एनर्जी, मेरी पुरानी मेमोरीज की रीलिविंग द मेमोरीज वाली जो फीलिंग है ना, वो जिंदगी में वापस आ गई है। तो हम जो है ना, कहने का मतलब ये है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। वही कोई अगर ऐसा गाना आए, रीमेक होकर आए, जो मुझे पहले भी नहीं पसंद था, क्या है यार पुराने घसीटे पिटे गाने को फिर से ले आया लेकिन अगर वही गाना अच्छी तरह से, जो गाना मुझे पसंद हुआ करता था, वो आ जाए, एज इट इज़ आ जाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है? 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड डे इंस्टाग्राम मिर्ची वन कथरिया मिर्ची अंशु। लेकिन सुने अभी मैं चलती हूँ, मुलाकात अब मेरी आपसे होगी सीधा संडे को, बिकॉज आई बी फ्लाइंग, आई बी ट्रैवलिंग फॉर टू डेज, आई गॉट एन इवेंट इन रियाद टू होस्ट। सो सारे अपडेट्स के लिए कि मैं रियाद में क्या कर रही हूँ, विच इज़ अ शो दैट आई एम गोना बी होस्टिंग, यू हैव टू कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज मिर्ची अंशु। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट्स दैट आई एम होस्टिंग, एंड आई एम सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड देन आई कनेक्ट विद यू ऑन संडे। अंटिल देन यू ऑल स्टे ट्यून्ड एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मा सलामा हबीबी। तो मैं चले आ।

शेखर अफजानी की खूबसूरत सी आवाज, कश्यप का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म हसी तो फसी, बट दिस हैपेंस टू बी द रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ दिस आइकॉनिक ट्रैक।

0: भाई ये तो बीते दिनों की बात हो चुकी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: यही कि अगर फिल्म में बहुत बड़ा स्टार ले लिया हमने तो वो फिल्म चलेगी ही चलेगी, और इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल फिलहाल है यश स्टारर टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिजास्टर, क्योंकि इस फिल्म के लॉसेस मेकर्स के लिए हर बैरियर क्रॉस करते जा रहे हैं यार। देखो यश लेड इस गैंगस्टर ड्रामा के अगर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स की बात करें ना तो फिलहाल द टीम इज लुकिंग एट अ लॉस ऑफ ₹300 करोड़ एंड माइंड यू टॉक्सिक हैपेंस टू बी द बिगेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर अ फीचर फिल्म इन इंडिया। और बात सिर्फ यहाँ पे ही रुकनी जाती है, एक और नया इशू सामने आया है। तो फिल्म जब रिलीज नहीं हुई थी ना उस वक्त उसके ओटीटी राइट्स के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स ने कुछ अमाउंट ऑफर किया था एंड इट वाज अराउंड 150 करोड़ रुपीस की डील, बट मूवी मेकर्स का डिमांड था कि नहीं यार हम 200 करोड़ से नीचे तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये फिल्म थिएटर्स में आई औंधे मुंह गिर गई। हाँ ये बात और है कि जो इसकी कमाई अब तक हो पाई है वो सिर्फ इसके एडवांस बुकिंग की वजह से ही हो पाई है। एंड यू वोंट बिलीव अब इस फिल्म को ओटीटी के लिए जो ऑफर मिल रहा है इट इज जस्ट 30 करोड़, एंड दैट इज व्हाई आई से दैट वो बीते जमाने की बात है जब आप सिर्फ बड़े सितारे अपने फिल्म में लेके फिल्म को चला लेते थे। भैया ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है और चूजी भी, बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी वैसे समझदार को इशारा काफी। निर्चिपी मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तो कहाँ करा है तो नहीं हो गया
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
7: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

दोस्त अगर एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो. From glam to guru avatar, और ये हो रहा है एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ, जो फिजिक्स वाला के वन ऑफ द रेनाउंड टीचर्स पंकज सजारिया के ऊपर बन रही बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले हैं. माइंड यू, फिजिक्स वाला एक रेनाउंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा है फाउंडेड बाय अलख पांडे, एंड उनके ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बन चुकी है विद द नेम हेलो बच्चों. नहीं देखी तो प्लीज देख लो, यू लव इट. बट अब जब उनके ही इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द रेनाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स दैट इज पंकज सजारिया के ऊपर ये फिल्म बन रही है, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. मनोज बाजपेयी इस महात्मा गांधी. सो फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग डायरेक्टोरियल में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे, जिस फिल्म का बैकड्रॉप है इंडिया के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेसर नोन 21 डेज पीरियड की कहानी. वैसे अभी तक इस फिल्म को लेकर सारी डिटेल्स अंडर रैप्स रखी गई हैं, बट अभी वाजपेयी साहब का एक लुक जो है वो ऑनलाइन सरफेस हो रहा है, विच डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज. अर्शद वारसी स्टारर पॉपुलर साइकोलॉजिकल सीरीज असुर की बात करना चाहती हूँ, जिसका थर्ड सीजन इज अंडर मेकिंग. बट इस बार सीरीज के डायरेक्शन का कमाल ओनी सेन ने नहीं उठाया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम उनके पास कुछ फ्रेश नहीं था टू ऑफर, एंड नाउ द हैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डायरेक्टर गौरव शुक्ला, जो इस सीरीज के लीड राइटर और शो रनर रहे हैं ऑन द प्रीवियस सीजंस. वैसे अनदर अपडेट इज कि एक्टर एहसान चन्ना ने भी इस सीरीज के स्टारकास्ट को ज्वाइन कर लिया है. और अगर आपको ओनी सेन के बारे में नहीं पता देन ब्रो, उनकी रिसेंटली आई ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज तो आपने देखी होगी. नहीं देखी तो प्लीज देख लो यार, यू विल नॉट रिग्रेट इवन अ बिट ऑफ इट. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, उसको खेलने में जो आपको आजकल मजे आ रहे हैं, बस उस मजे की शुरुआत करते हैं। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे डीएम में जाके इंस्टा पे अपना नंबर भेजना होता है, देन आई गिव यू अ कॉल एंड उसके बाद इस गेम की शुरुआत होती है। आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है सामिया। तो सामिया, अपने बारे में कुछ बताएंगे, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं?
3: मैं गुवाहाटी से हूँ और मैं जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ फिलहाल तो।
0: ओके, तो आप गुवाहाटी में सुनती हैं मुझे?
3: हाँ।
0: चलिए फिर गेम की शुरुआत करें, तैयार हैं आप?
3: हाँ।
0: बॉलीवुड की फिल्म जिसमें टफी है,
3: हम साथ, हम आपके हैं कौन,
0: हम आपके हैं कौन में दूल्हे की साली कौन है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: क्या बात है, माधुरी दीक्षित किस फिल्म में चक धूम धूम करती है?
3: दिल तो पागल है।
0: दिल तो पागल है में डांस ट्रूप की लीड डांसर कौन है?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर को किस फिल्म में अपने ड्राइवर से प्यार हो जाता है?
3: राजा हिंदुस्तानी।
0: बहुत बढ़िया, राजा हिंदुस्तानी में ड्राइवर कौन है?
3: आमिर खान
0: किस फिल्म में टेररिस्ट बने हैं?
3: जिसमें काजल देख नहीं पाती शायद।
0: हाँ हाँ हाँ सही है,
3: फना।
0: बहुत अच्छे, फना में विजुअली इम्पेयर्ड लवर कौन है?
3: काजल
0: किस फिल्म में ऑब्सेसिव लवर एंड किलर बनी है?
3: गुप्त
0: में दुनिया हसीनों का मेला, मेले में किसका दिल अकेला है?
3: नहीं पता, ये मैंने देखी ही नहीं है।
0: Never mind. बट कसम से इस गेम को इतने मजेदार लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: So my dear बाबू मोशाय, आज के शो पे हमारी पहली मिर्ची फिल्मची बनी है सामिया। अब इसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: This show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे अरे, मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ। आपका नॉटी माइंड कहाँ भाग रहा है? चलिए चलिए, उसको वापस बुलाइए। सो आज के गेम की शुरुआत हुई है साम्या के साथ, और वो अटक गई एक पॉइंट पे, जिसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है अर्जुन, हु इज अ पायलट बाय द वे। तो यात्री अपने कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि ये मिर्ची फिल्म ची गेम एक अलग ही उड़ान भरने वाली है। तो अर्जुन जी, क्या तैयार हैं आप?
3: जरूर, चलिए ट्राई करेंगे जरूर।
0: ओके, गुप्त में दुनिया हसीनों का मेला, मेले में किसका दिल अकेला?
3: बॉबी देओल।
0: बहुत बढ़िया। बॉबी देओल किस फिल्म में सर पे जाम रख के जमल कुड़ू करते हैं?
3: एनिमल।
0: एनिमल में हिक्की के कलर की लग्जरी गाड़ी किसको मिलती है?
3: तृप्ति डिमरी।
0: तृप्ति डिमरी के शादी की सीडी किस फिल्म में चोरी हो जाती है?
3: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।
0: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में विक्की कौन है?
3: राजकुमार राव।
0: राजकुमार राव को चुड़ैल से प्यार किस फिल्म में होता है? स्त्री में रुद्रा भैया कौन है?
3: रुद्रा भैया है पंकज।
0: पंकज त्रिपाठी को किस फिल्म में भगवान खुद हेल्प करने आते हैं?
3: OMG 2। ओ माई गॉड 2।
0: यस, OMG 2 में शिव जी कौन बने हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार गुरु गुलाब खत्री किस फिल्म में?
3: आवारा पागल दीवाना।
0: आवारा पागल दीवाना में भूलने की बीमारी किसको है?
3: परेश रावल को।
0: परेश रावल किस फिल्म में थिएटर ग्रुप के ओनर है?
3: भागम भाग।
0: भागम भाग में टैक्सी ड्राइवर कौन है?
3: राजपाल यादव।
0: राजपाल यादव किस फिल्म में रोटी काटने के लिए आरी देगा क्या कोई? आरी मांगते हैं।
3: चुप चुप के।
0: चुप चुप के में म्यूट होने की एक्टिंग कौन करता है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की बीवी से खिलजी को प्यार किस फिल्म में होता है?
3: संजय लीला बंसाली
0: पद्मावत में पद्मावती कौन है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण वेरोनिका किस फिल्म में बनी है?
3: कॉकटेल।
0: Yes, क्या बात है, आप तो एकदम फ्लॉलेस फिल्मची साबित हुए हैं हमारे दूसरे वाले आज के दिन के। कैसा फील कर रहे हैं सर?
3: I'm feeling very happy about it.
0: तो चलिए इसी बात पे आपके हैप्पीनेस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, आपको ये टैग देके।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: आई नो जो लोग नहीं खेल पाए उनको फोमो हो रहा है, बट आई प्रोमिस अगर आप मुझे मिर्ची श्रुति के नाम से इंस्टा पे ढूंढ के मेरे डीएम में अपना नंबर भेजेंगे, देन डेफिनेटली आपको भी कॉल जाएगा टू प्ले द गेम। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स ऑन।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
2: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ गाना। रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से ये क्या हुआ,

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: पिछले सात दिनों में ये सब है खोया।
1: हर हिंदी सिनेमा मसालेदार नहीं होती।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: और बाबू मोशाई, ये तो एक फिक्स परसेप्शन है कि जब भी हम देसी फिल्मों की बात सोचते हैं या करते हैं तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में एकदम से आती हैं, जैसे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जिसमें बहुत सारा रोमांस है, बहुत सारा ह्यूमर है, इंटेंस इमोशंस हैं, एंड इन शॉर्ट आर मूवीज आर नथिंग बट मसालेदार। लेकिन हाँ, इन द रीसेंट टाइम्स बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं दैट हैव टच्ड अपॉन सेवरल सीरियस टॉपिक्स अराउंड सोशल इश्यूज, मतलब बहुत सारे स्टिग्मास जो हमारी सोसाइटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके बने हुए हैं उनको उठाकर फिल्में बनी। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश विंग्लिश। भाई, देयर इज नो डाउट दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज टर्न्ड आउट बाय आवर फिल्म इंडस्ट्री इन द लास्ट डेकेड। इनफैक्ट ये फिल्म एक स्पॉटलाइट डालती है देसी हाउसवाइफ्स के ऊपर, अ सेक्शन जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी फिल्म के साथ श्रीदेवी मैम लेकर आई एक न्यू वेव ऑफ चेंज इन आवर सोसाइटी विद द फिल्म्स फ्लॉलेस प्लॉट लाइन एंड हार्ट वार्मिंग कैरेक्टर्स। वेल, मेरी इस लिस्ट में अभी और भी कुछ फिल्मों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. La virbala, burga. Mirchi, burga.
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दी है, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये क्या, बंद कर इसको, बंद कर बंद कर बंद कर, रमेश इसे बंद कर दे। यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: तू चोरी करने के लिए गया वाले?
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया
1: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's
4: pajak. The show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCTs Nunu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: content is greater than masala.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: अब देखो यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जब बात होती है तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही आता है हमारे दिमाग में. इनफैक्ट हम अगर फिल्मों को सोचते हैं तो उसमें बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा एक्शन, इंटेंस इमोशंस, ये सारी चीजें ढूंढते हैं. इनफैक्ट हमें दिखता भी है. बट इन द रीसेंट टाइम्स बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाया है अपने फिल्मों के थ्रू दैट हैव नॉट ओनली क्रिएटेड अवेयरनेस बट हैव ऑल्सो एंडेड अप इन्फ्लुएंसिंग पीपल. और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ. लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 2 पे लेट्स टॉक अबाउट शुभ मंगल ज्यादा सावधान, डायरेक्टेड बाय हितेश केवलिया, स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड जितेंद्र कुमार इन लीड रोल्स. वेल, द मूवी रिवॉल्व्ड अराउंड टू मेन इन लव, डेल्ट विद होमोफोबिया बेसिकली. एंड इस फिल्म में इक्वल अमाउंट ऑफ ह्यूमर भी था, ड्रामा भी था, बट इट गेव अ बिग नज टू आवर सोसाइटी कि हम एज ह्यूमंस हर इंसान को वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें रादर दैन categorizing them into a particular section. An intriguing movie to watch for sure. Moving on in the list, number 3 pe let's talk about Lamhe. Ye film aayi thi in the year 1991 starring Shridevi and Anil Kapoor in the lead roles. Kahani ek choti umr ki ladki ke ek apne baap ki umr ke bande ke sath pyar mein pad jane ki hai. हाँ सोचो, 1991 में इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे यश चोपड़ा साहब. सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है देन इट इज अ डेफिनेट वॉच फॉर यू. फिलहाल मेरी इस लिस्ट में और भी 2 फिल्मों की बात बाकी है बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल. तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी. इट्स हॉट.

0: Masala is not always our craving.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: बाबू मुशायर, मैं फिल्मों की बात कर रही हूँ यार. आप कहाँ खाने पीने के ख्यालों में खो गए. सो बेसिकली अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा एक्शन, इंटेंस ड्रामा और इमोशन भरा हुआ होता है. इन शॉर्ट, सब कुछ मसालेदार. बट हाँ, लीक से हटके बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और आज पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ. वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई हो भाई साहब. 2018 में आई थी ये फिल्म. अब सोचो आज की डेट में अगर आपको भी पता चलता है कि आपकी माँ प्रेग्नेंट हो गई है, ऐसी सी फीलिंग आपको अगर ना भी आए, आपके आसपास बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे. एंड दिस इज व्हाट द मूवी डेल्ट अबाउट. बेसिकली इस फिल्म ने हमें बहुत सारे वैल्यूबल लेसन्स दिए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सिखाया है कि हमें इलॉजिकली अपने पेरेंट्स को कभी भी जज नहीं करना चाहिए. बेसिकली इस कहानी में जिस तरीके से पेरेंट्स के बीच के प्यार और अफेक्शन को दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि भाई वो भी ह्यूमंस हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं और भावनाओं में वो भी बह जाते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली ओके. सो प्लीज डोंट मेक अ फस अबाउट इट. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है देन यू should definitely watch it. Yeah, moving on, number 5 pe let's talk about the film Kya Kehna. 90s kid hone ke nate mujhe ye film kafi zyada pasand hai, main bata sakti hu. And let's be honest, aaj bhi premarital sex aur pregnancy टैबू माना जाता है यार. इस कहानी में एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट किस तरीके से शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो क्या डिसीजंस लेती है अपनी लाइफ के लिए, इज व्हाट द मूवी टॉक्स अबाउट. एंड प्रीति जिंटा वाज जस्ट सो फ्लॉलेस इन इट. वेल, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई फिल्म ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी. इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
2: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो. From glam to guru avatar, और ये हो रहा है एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ, जो फिजिक्स वाला के वन ऑफ द रिनाउंड टीचर्स पंकज सजारिया के ऊपर बन रही बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले हैं. माइंड यू, फिजिक्स वाला एक रिनाउंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा है फाउंडेड बाय अलख पांडे, एंड उनके ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बन चुकी है विद द नेम हेलो बच्चों. नहीं देखी तो प्लीज देख लो, यू लव इट. बट अब जब उनके ही इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द रिनाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स दैट इज पंकज सजारिया के ऊपर ये फिल्म बन रही है, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. मनोज बाजपेयी इज महात्मा गांधी. सो फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग डायरेक्टोरियल में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे, जिस फिल्म का बैकड्रॉप है इंडिया के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेसर नोन 21 डेज पीरियड की कहानी. वैसे अभी तक इस फिल्म को लेकर सारी डिटेल्स अंडर रैप्स रखी गई हैं, बट अभी वाजपेयी साहब का एक लुक जो है वो ऑनलाइन सरफेस हो रहा है, विच डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज. अर्शद वारसी स्टारर पॉपुलर साइकोलॉजिकल सीरीज असुर की बात करना चाहती हूँ, जिसका थर्ड सीजन इज अंडर मेकिंग. बट इस बार सीरीज के डायरेक्शन का कमाल ओनी सेन ने नहीं उठाया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम उनके पास कुछ फ्रेश नहीं था टू ऑफर, एंड नाउ द हैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डायरेक्टर गौरव शुक्ला, जो इस सीरीज के लीड राइटर और शो रनर रहे हैं ऑन द प्रीवियस सीजंस. वैसे अनदर अपडेट इज कि एक्टर एहसान चन्ना ने भी इस सीरीज के स्टारकास्ट को ज्वाइन कर लिया है. और अगर आपको ओनी सेन के बारे में नहीं पता, देन ब्रो उनकी रिसेंटली आई ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज तो आपने देखी होगी. नहीं देखी तो प्लीज देख लो यार, यू विल नॉट रिग्रेट इवन अ बिट ऑफ इट. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी।
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's Hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

बिग्बी को इमेजिन करके लिखे थे इस हीरोइन के डायलॉग्स। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। ओके, प्लीज डोंट माइंड माई वॉइस फॉर द सॉन्ग, बट एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ अबाउट द मूवी अनजान, जो 1994 में रिलीज हुई थी, जिसमें माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और दीपक तिजोरी लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। बाकी फिल्म को डायरेक्ट किया था राहुल रवायल ने और इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे रूमी जाफरी ने, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में रिवील किया कि भाई सेकेंड हाफ में माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर जो रिवेंज मोड में आता है ना, उसके डायलॉग्स लिखने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की थी और इमेजिन किया था कि वो अमिताभ बच्चन के लिए डायलॉग लिख रहे हैं, जिस इमेजिनेशन के बाद वो अपनी लाइन लिखा करते थे और उसका बस जेंडर चेंज कर दिया करते थे। विच मेक्स मी थिंक कि भाई एक्चुअल में राइटर्स के लिए भी तो चैलेंजिंग होती होगी ना ये चीज, क्योंकि जिस हिसाब से पहले के जमाने में फीमेल कैरेक्टर्स को उतना स्ट्रांग नहीं बनाया जाता था, तो उनके डायलॉग्स को लिखने की आदत भी तो नहीं होती होगी ना लोगों को। बट थैंकफुली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में Things are changing. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और ऐसे ही किसी फिल्म के बारे में आपको कोई ट्रिविया जाननी हो तो मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट करके उस फिल्म का नाम मुझे जरूर बताना। Till then, stay tuned. It's hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: हेलो हेलो
2: बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को। बेटे
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: रेडियो मिर्ची। आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo-Noo. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: भाई IRCTC की वेबसाइट से भी ज्यादा स्लो है इनके रिप्लाईज।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची बिट्यून आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज हमारी जिंदगी में पाए जाने वाले दो कैटेगरीज ऑफ मैसेज के रिप्लाई करने वाले लोगों की बात करना चाहती हूँ, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो बड़े ही स्वीट से, क्यूट से, प्यारे से हैं, क्योंकि ये आपके मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली कर देते हैं। चलो अगर इंस्टेंटली ना भी कर पाए, थोड़ा डिले भी हो गया, तो जब रिप्लाई करेंगे देन दे विल बी लाइक यार ये रीजन था, इस वजह से मैं इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पाया एंड व्हाट नॉट। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल है, शर्म भी नहीं आती इनको 0.1% की। इनफैक्ट भगवान ने तो इनको बड़े फुर्सत से बनाया, क्योंकि जिंदगी में इनको हर चीज की फुर्सत है, बस आपके मैसेज का रिप्लाई करने की नहीं है। ये वो लोग हैं जो ड्रॉप डाउन पे आपका मैसेज पढ़ लेते हैं, कुछ लगा कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए तो अपने दिमाग में ही रिप्लाई कर देंगे, ये भी नहीं कि जहमत उठा के आपके मैसेज पे जाके उसका रिप्लाई करें। तो सोच ही लीजिए इनकी तरफ से कॉन्वर्जेशन कहां ही जाती होगी। तो बताइए फिर आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? दूसरे वाले में होंगे तो प्लीज थोड़ा तो सुधार लाने की जरूरत है दोस्त। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: यार कुछ आवाजें आपको गाना नहीं सुनाती, आपको आपकी जिंदगी का एक हिस्सा याद दिला देती हैं।
1: 90 ml, 90 ml विद श्रुति।
0: और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आशा भोसले की आवाज इज वन सच वॉइस जिसको लेकर हर दूसरा इंसान यही फील करता है। इट्स हैप्पी बर्थडे टू आवर लेजेंडरी आशा ताई, जिनकी आवाज शायद एक डेड बॉडी में भी जान फूंक डाले। कभी घर में रेडियो बज रहा हो और अचानक से पिया तू अब तो आजा सुनाई दे दे, तो बिना सोचे पैर थिरकने लगते थे। कभी दम मारो दम के साथ वो केयर फ्री रिबेलियस वाली फीलिंग लेकर आती थी। और फिर मेरा कुछ सामान जैसे गाने, जहां आशा जी की आवाज में एक अजीब सी खामोशी भी थी और गहराई भी। मम्मी के फेवरेट सॉन्ग से लेकर पापा के रेडियो के गाने तक, 90s की कैसेट से लेकर आज की प्लेलिस्ट्स तक, आशा भोसले जी की आवाज ने जनरेशंस को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, उनके साथ ग्रो भी किया। मतलब हर बार आवाज वही लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। एंड कहीं ना कहीं यही तो एक आइकॉन की पहचान होती है यार। कुछ आर्टिस्ट्स अपने वक्त के सुपरस्टार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा अपने लगने लगते हैं। वेल, आशा जी उन्हीं में से एक थी। उनके गाने बजते रहेंगे, नए जनरेशन उन्हें डिस्कवर करती रहेंगी, और हम जब भी उनकी आवाज सुनेंगे शायद हमें सिर्फ एक गाना नहीं अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत टुकड़ा याद आएगा, क्योंकि आशा जी की आवाज इंडस्ट्री की हिस्ट्री भी है और हमारी मेमोरीज का साउंड ट्रैक भी। हियर्स विशिंग ऑल दी आशा ताई फैंस अ वेरी हैप्पी आशा डे टू यू। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: ये तो थ्रिलर बोल के मजाक कर दिया बे।
1: OTT एंड चिल।
0: फिल्म रन याद है आपको? उसमें किस तरीके से विजय राज के कैरेक्टर को छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया गया था और बिरयानी के नाम पे कौवा बिरयानी खिलाई गई थी, ठीक वैसे ही वाली फीलिंग आई है इस मूवी के साथ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट OTT पे रिसेंटली आई फिल्म गांधारी, जिसको डायरेक्ट किया है देवाशीष मखीजा ने और इसमें हमारी तापसी पन्नू इज एज द लीड। सो फिल्म का बैकड्रॉप है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जहां तापसी पन्नू एज अ मदर loses her child, I mean वो किडनैप हो जाती है और फिर ये माँ अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए एडी चोटी का जोर लगाती है। बस प्रॉब्लम ये है कि माँ अचानक से ना देख नहीं पाती क्योंकि उनको चोट लग जाती है और जो ट्रॉमा उनके आंखों पे है उसकी वजह से उनका विजन चला जाता है, विच इज अ टेम्पररी थिंग, धीरे धीरे इट कुड बी रीगेन्ड फॉर श्योर। बट उस हालत में ये माँ जो है इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के गढ़ तक पहुंचती है बाय डिफरेंट मींस और जो अल्टीमेट विलन होता है ना उसको दबोच लेती है। बट यार इन सारी चीजों को दिखाने का जो तरीका है ना बड़ा कैजुअल सा लगा मुझे, मतलब द मूवी इज फुल ऑफ ट्रिक्स। एक महीने में बंदी तैयारी कर ले रही है कि भाई बिना देखे भी मैं लोगों को फाइट कर सकती हूँ और मेजर एक्शन कर सकती हूँ, फिर अगले महीने से वो अपने इसी टास्क की शुरुआत भी कर देती है। देखो ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके कोई फिल्म या कोई सीरीज नहीं बनाई, हाउ कैन वी फॉरगेट मर्दानी, बट वहाँ कहानी सॉलिड थी, परफॉर्मेंसेस सॉलिड थी और चीजें ना एक्चुअली आपस में वीव हो रही थी। बट यहाँ पे सब कुछ तितर बितर चल रहा है यार। तो इस फिल्म के ऊपर अपने घंटों बर्बाद करने से अच्छा है कि आप सीरीज अनचोजन देखें, विच इज ऑल्सो करेंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: यार एक जमाने में होते थे सिल्वर जुबली स्टार, गोल्डन जुबली स्टार, हमारे पास होते हैं गुड सॉन्ग स्टार, और उनमें सबसे पहला नंबर अगर मैं किसी इंसान को देता हूँ तो वो नाम है इमरान हाशमी का। मतलब भाई अगर सड़क छाप मतलब फुटपाथ टाइप पिक्चर में भी आता था ना, उस पिक्चर के गाने इतने जबरदस्त होते थे पूछिए मत। और तब से लेकर आज तक एक इंसान जिसकी हर फिल्म का गाना हमारे कोर कोर में कोने कोने में घुस गया दिमाग के, वो है इमरान हाशमी। फिलहाल शुरुआत करते हैं शाम शानदार की, मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 4:03 के आसपास का।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: तो मैं बात इमरान हाशमी की कर रहा था कि कुछ लोगों की किस्मत ना अलग तरह से लिखी होती है। मतलब इमरान हाशमी के लिए लिखा था तू हीरो बन जाएगा, पिक्चर तेरी हिट होना हो, गाने सुपर डुपर हिट हो जाएंगे और तू पब्लिक को पसंद आएगा और तेरे लिए लोग बकायदा फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक करेंगे, स्पेशली कॉलेज से लड़के लड़कियां बंक मार के पिक्चर देखने भी आएंगे। यही तो है इमरान हाशमी का दौर। फिलहाल के लिए आवारापन 2 रिलीज हो चुकी है, जिन लोगों ने देखी उतना ही कहना चाहता हूँ बहुत लकी हो यार, सही टाइम पे स्किप कर दी मस्त वाला गौरव, लेकिन आ गया मुझे स्किप नहीं कर पाओगे। अगले 4 घंटे देश दुनिया की बातें हम आपके कान में सुनाते, कतर के कोने कोने की खबर लेके आ गए, बस आप वॉल्यूम बढ़ाई लो, रेडियो अपना लगाई लो, अब मिर्ची सुनते रहो, इट्स हॉट।

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: थैंक यू.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब ये गेम है क्या? ये
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: कच्चा धागा,
2: रेस
1: लगा लो,
2: दस
1: पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े.
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव
2: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कोई सुनेगा तो
2: नहीं सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
4: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: कब तू कर लेना,
1: ये भी तो एक खूबसूरत रिश्ता है, ऐसे कैसे बस छोड़ दोगे। अरे इस खूबसूरत रिश्ते की बात कर रहे हैं जो आप कतर में आते ही कहरामा के साथ बनाते हैं, जहां पर आपकी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सारा दारोमदार कहरामा के पास होता है और आप हर महीने अपना बिल सबमिट करते रहते हो, चकाचक पानी मिलता रहता है और नॉनस्टॉप बिजली। लेकिन जब आप उसे छोड़ रहे हो तो आपको क्या करना है, ये खुद बताया है कतर टीवी पर। इनका नाम है शेखा नसफ अल मोहनादी, ये फर्स्ट सुपरवाइजर ऑफ सब्सक्राइबर केयर इन दी सब्सक्राइबर सर्विस डिपार्टमेंट है कहरामा में। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी से बताई है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर जा रहे होते हैं तो उन्हें क्या करना होता है। बड़ा ही सिंपल है सर, आपको ना एक फाइनल सेटलमेंट करना ही करना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्पशन को आप पूरा करने के बाद जब आप कहते हो कि अब से मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, तो उस टाइम जो फाइनल रीडिंग आती है वही आपके बिल को आप सबमिट करते हो और बस आपको अकाउंट क्लोजिंग डिपार्टमेंट की वो स्लिप मिल जाती है, जिससे आप आराम से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर दूसरी प्रॉपर्टीज में जा सकते हो। लेकिन याद रखो, आपको एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करके अपने उस कनेक्शन को खत्म करने की बात कहनी होती है, और जब वहां से रीडिंग हो जाती है उस दिन से जो भी पेमेंट होता है वो आपको दे देना होता है। लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो निकल गए थे, ऐसे कैसे दे दे, हैं हमने तो यूज ही नहीं किया। तो आपको इसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन डालनी है कि हम इस कनेक्शन को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद कहरामा की फाइनल रीडिंग आएगी और जो पैसे आएंगे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये रिश्ता बड़ा नाजुक सी डोर से बना है, जहां पर आपने उनका पानी यूज किया है, उनकी बिजली चलाई है, तो जो पैसे देने वो देने ही पड़ेंगे। ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये कतर है सर, यहाँ सब कुछ ना रूल एंड रेगुलेशंस के साथ होता है, यहाँ पर कोई बाबू साहब आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। 89.6 मिर्ची वन अंडर द टेबल, इट्स हॉट।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं टड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

मुझे खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: What a lovely vibe and energy in this song. Yes, Amit Trivedi, Vishal Dalani ka combination. Nurda Punjab, sunaya kisne ji?
1: Mast mola gaurav.
0: Aur Punjab se lekar Kashmir tak, Vancouver se lekar Japan tak. Ladies ko jo sabse zyada pasand hai wo hai gold. Aur gold ke rates pata kahan lagte hai? Are yahi mirchi pe.
2: Gold update.
0: Well, अगर बात करें तो yes, आपको यहां पर इस वक्त अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स कुछ यूं मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फौशनाबार 591 कतारी रियाल, 5 ग्राम गोल्ड लेडी फौशनाबार 2769 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम ये मिलेगा 5469 कतारी रियाल में, पैम्प 1 औंस गोल्ड लेडी फौशनाबार 16907 एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज 62788 कतारी रियाल। ये थे आपको राइट नाउ के अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स, यहीं पर पता लगते रहते हैं ये सारे रेट्स। 89.6 मिर्ची वन ट्यून कर लिया करो, मिर्ची इट्स हॉट।
3: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।
4: Authentic, original, and better than our right.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी
2: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी

0: To play.
1: Absolutely.
0: To grow.
1: With Maserati.
2: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
1: Milk, cheese, yogurt, labneh.
2: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: इतनी गर्मी में रानी को नचवा रहे हो तो पानी वानी भी लेके आ जाओ भैया।
1: मस्त मौला गौरव।
0: थोड़ी देर के बाद पानी के तुरंत करक पिलाओ। देखो हमारे कतर की गर्मी चाहे कितनी भी हो, करक हमें गर्मा गर्मी चाहिए, यही तो यहाँ की खासियत है। लेकिन सूरज चाचू मान जाओ यार, निकल लो अब।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट
0: यार, मतलब आज भी चरम तक पहुंचे। 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान पहुंचा था, वही अब 41 से 40 की तरफ लुढ़कता हुआ पारा। दिन का मिनिमम अराउंड 34 आ जाएगा, पर अगले कुछ दिनों तक हमें यूं ही और गर्मी बर्दाश्त करनी है, क्योंकि कुछ लग नहीं रही छूट। हाँ जी, सोहेल स्टार का पहला 13 दिन का फेज खत्म होने को भी आ रहा है। ऐसे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़े और दिन पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। 15th of September के बाद आपको ड्रास्टिक चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, और तब आप प्लानिंग ये जो करनी है। फिलहाल तो एक ही प्लान, सब लोग 25 सितंबर QNCC टिकट्स अवेलेबल है, आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। क्यू टिकट्स, SCT, इसके अलावा आपको प्लैटिनम लिस्ट

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, अब मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: संजू राठौर की आवाज में लाल लाल कलर ची बांगड़ी गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: और सिर्फ गाना नहीं सुनाते, घड़ी का समय बताते, क्या है आज शाम का सीन, क्योंकि मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 5:03। वैसे कतर ना अपने देश में होने वाले हर इवेंट के लिए एकदम जबरदस्त विजन रखता है, और इसीलिए पहले साल के बाद दूसरे साल वो और बड़ा, तीसरे साल और बड़ा, और फिर धमाकेदार हर साल के साथ वो बड़ा ही बनता जाता है। और ऐसी तैयारी हो रही है अब कतर बोट शो 2026 के लिए। यस, ओल्ड दोहा पोर्ट की रौनक और बढ़ेगी नवंबर 4 से नवंबर 7 तक, क्योंकि एक बार फिर से कतर 100% रेडीनेस के साथ तैयार है कतर बोट शो के लिए। कतर एयरवेज इसमें पार्टनरशिप कर रहा है, ऑफिशियल ट्रेवल पार्टनर के रूप में कतर एयरवेज ऑन बोर्ड ऑलरेडी हो चुका है, तो ट्रेवल वाले करने वाले लोगों के लिए कोई झिझक नहीं है, उनके लिए आराम से है कि वो प्लान करें, कतर एयरवेज की फ्लाइट लें और कतर बोट शो का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा यहां पर होटल डील्स भी मिल रही है, सीमलेस प्लानिंग लगातार हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आप वेबसाइट्स पर जाइए, आपको स्पेशल रेट्स दिखेंगे, और कहा यही जा रहा है लग्जरी सुपर यॉट हो, वाटर फ्रंट डाइनिंग हो, लाइव एंटरटेनमेंट हो या मरीन लाइफस्टाइल का सबसे ग्रैंड स्टेज, कतर ये सब कुछ एक ही जगह लेकर आता है कतर बोट शो में। तो बस बात इतनी है कि मौसम बदलेगा नवंबर में, और हम और आप अपने घर वाले दोस्तों यारों को उसी टाइम बुलाएंगे कि देखो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ लग्जरी यॉट वॉट के एग्जीबिशंस लगते हैं, बोट शो लगता है, तुम उसका हिस्सा बन जाओ, अच्छा फील करोगे, क्योंकि हम तो ये हर साल देखते हैं। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट, शो ऑफ करना चाहिए कभी कभी।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहे हो
2: कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सर ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तो कहाँ करा तो नहीं हो गया
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकड़ुकू
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
1: कुकड़ुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
6: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
7: एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo Noo टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

अलका याग्निक शान की आवाज में हम तुमका ये गाना सुनाया किसने? फिलहाल इस गाने में गजब पिंगल कसती है लड़की लड़के पे। वैसे इसी उम्मीद में कि हम और आप दिमाग में जो भी सोचे वो पिंगल उस लड़की को पता है जिसका नाम है द मेंटलेस सुहानी शाह कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Yes, the mentally Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, presented by IPay, and trust me, एक ऐसी शाम जहां पर हम दिमाग को एकदम उड़ते हुए देखेंगे अपने वाले को, क्योंकि इस लड़की के पास वो टैलेंट है कि आपके दिमाग से आप क्या सोच रहे हैं ये तक बता सकती है और ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगी जो सच लगेगा और सच ऐसा लगेगा कि आप बोलोगे कर कैसे रही है। और अगर आप ये पूरा फील करना चाहते हो तो पहले तो सुहानी की वीडियोस देख लो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह सुहानी शाह है, एंड ट्रस्ट मी उसके बाद आप कहोगे पहले टिकट बुक कर लो भाई, कैसे कर पा रही है। यस, रूबरू होकर इसे देखना समझना बहुत मजेदार होगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, इसी उम्मीद में कि आप टिकट्स बुक कर रहे हो। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, एस सिटी स्नूनू ऐप पर अगर आप टिकट बुक कर रहे हो ना तो 30 कतारी रियाल का कैशबैक है, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, वैसे ही टिकट प्राइजेस कम है। और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी टिकट्स बुक कर लो, 30 कतारी रियाल का कैशबैक एट एनी कैटेगरी। इस मौके का फायदा उठाओ दोस्तों, अपनी टिकट्स बुक करो और मस्त मॉल को थैंक यू करो जो हर बात में आपके प्रॉफिट के बारे में जरूर सोचता है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

कितना वर्सेटाइल टैलेंट है ना इस फैमिली में, एक तरफ नेहा कक्कड़ और एक तरफ टोनी कक्कड़। मेरे वॉलेट के हालात भी बिल्कुल इन ब्रदर सिस्टर डुओ जैसे ही होते हैं। स्टार्टिंग में एकदम नेहा कक्कड़ होते हैं, 1 से 10 तारीख तक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेरा जीवन चल रहा होता है, और तुरंत 15 तारीख आते आते मेरा वॉलेट टोनी कक्कड़ की तरह बिहेव करने लगता है, ऐसे गाने बनाता है, पूछो मत, वैसे ही मेरा वॉलेट बहाने बनाता है कि नहीं है पैसे, कैसे खर्चोगे। लेकिन अगर आपके पास है तो भेजो घर ना। राइट नाउ की बात करूं, 1 कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 25.97 है, 25.97 रुपए। एंड वहीं 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.07। अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करेंगे जनाब, 1 कतरी रियाल के बदले 76.12 पाकिस्तान रुपीज। उसके बाद तपाई को नेपाल रुपीज का रेट छोड़ दाजो, 1 कतरी रियाल के बदले 41.30 का भालचा रेट रही, 41.30 का रेट छो बहनी घर भेजने लाई सही टाइम छो। अगर इसके बाद बांधो बांग्लादेशी टाका बात करेगा दादा, 1 कतरी रियाल के बदले 33.69 तो 33.69 भाड़ी थी के पैसे पार्टी डॉ। हाँ ऐसे ही बोलते हैं ना, 89.6 मिर्ची वा, इट्स हॉट।

Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner.

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: मम्मा माशुका गाना खत्म और आपके साथ आपका आशिक
1: मस्त मौला गौरव।
0: देवी और सजनों, टाइम बताने की बारी। शाम के 6:04 होने को आ गए।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आ गया अपने सपनों को सच करने का वक्त आ गया। 89.6 मिर्ची 1 पर मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट एंड इस्लामिक अफेयर्स ने अनाउंस कर दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स जो हज 2027 का हिस्सा बनना चाहते हैं, साल 2027 में हज करने जाना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुला है। यस, सितंबर 20th संडे से यह शुरू होगा और अक्टूबर 20th ऑलमोस्ट एक महीना हज पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस, रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स दोनों के लिए खुल जाएगा 20th of September to October 20th। वो टाइम जब हम ये मानते हैं कि ऊपर वाले की इबादत में टाइम निकालेंगे और हज पर जाकर हाजी बनेंगे। लेकिन इस बार का कोटा 4400 पिलग्रिम्स का है, यानी कि हज यात्री सिर्फ 4400 हैं और आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी पहला स्टेप है जो एप्लीकेंट्स को देना ही देना है। एंड इसके अलावा आप हेल्थ सेंटर्स पर जाकर मेडिकल असेसमेंट कराकर जो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड आएगा उसमें से आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो जाकर सबमिट करनी है। एंड याद रखिए, रेसिडेंट्स एंड जीसीसी सिटीजंस कम से कम 45 ईयर ओल्ड होने चाहिए एंड इससे पहले कभी हज परफॉर्म करने नहीं गए हो। और तो और, अगर आप कंटिन्यूअस रेसिडेंस हैं इन कतर फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स तो एक और कंपेनियन आपके साथ जरूर ऐड हो जाएगा। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता लग जाएगा, लेकिन दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास वो मौका है जब आप ऊपर वाले की इबादत के लिए जाएंगे एंड हम सबके भी दुआएं कर कर आएंगे। चलिए जी, इस उम्मीद से कि आप अगली हज यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और मस्त मौला गौरव ने अपनी तरफ से थोड़ा नेकी का काम किया, आगे बढ़ते हैं। दुआ में याद रखिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Grabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने ले गया
3: वाले, तुमने पहले क्यों नहीं
2: बताया? यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: मेरी बात सुन,
2: माँ का तू मुझे मरवाएगा, कल तुझे मुझे फोन कर दिया।
3: मेरी बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's fucking.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

शाम गुलाबी होगी और आपका दिमाग हरा हो जाएगा। अरे जब सुहानी को आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये पता लग जाएगा। दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर। 25 सितंबर को QNCC में शाम 5 बजे से लगने वाली है सुहानी के इस मेंटल वाले बेहतरीन शो की महफिल, जहां पर वो माइंड रीड करेंगी, अपने इल्यूजन से ऐसा मैजिक क्रिएट करेंगे कि सब कुछ असल दुनिया का ही लगेगा। वेल, इसके लिए बस आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है एंड SCT स्नूनू पर इस वक्त 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है, यानी कि आप गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर, VIP कैटेगरी, VVIP कैटेगरी की टिकट बुक भी कर रहे हो ना, तो भी याद रखो आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिलेगा। मौके का फायदा उठाओ एंड इस वीकेंड अपनी प्लानिंग सेट कर लो, क्योंकि ना सुहानी के साथ साथ डांस म्यूजिक डुओ का तड़का लगने वाला है, जहां पर सिंगर चरण एंड डांसर अशी हमारे कतर में आ रहे हैं एंड वो भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो एक तरफ जहां संगीत, म्यूजिक, डांस, दूसरी तरफ सुहानी का मेंटलिस्ट शो, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे 25th of September एट QNCC। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, प्रेजेंटेड बाय iPay एंड ये कैसी शाम होगी जो हमें हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि कुछ अलग हटके आउट ऑफ बॉक्स सोचा है मिर्ची ने। अब बस आप अपना साथ दो, फटाफट टिकट्स बुक करो एंड मिर्ची को थैंक यू कहो जो हर समय कुछ ना कुछ आपके लिए करता ही रहता है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

मिल गया मिल गया मिल गया सारी मम्मियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आरजे मस्तमौला गौरव और स्कूल सीजन इज बैक। बैक टू स्कूल के ऑफर्स चल रहे हैं लेकिन मॉम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हाँ जी, ज्यादातर मॉम्स को यही लग रहा है कि अब लंच बॉक्स में क्या पैक करके देंगे जो बच्चों को टेस्टी भी लगेगा, न्यूट्रिशियस भी होगा, सुबह ब्रेकफास्ट में इनको क्या खिलाएंगे। ये बहुत बड़ी टेंशन सारी मॉम्स के बीच में रहती है कि यार क्या करें क्या ना करें। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपके घर में मिल्क, योगर्ट, चीज, लाबने और एग्स जैसे फ्रेश ऑप्शन अगर अवेलेबल हैं तो फिर फिकर किस बात की है, आपकी आधी टेंशन तो ऐसी ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, क्योंकि मज़राटी के यही प्रोडक्ट्स अब आपकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन बनेंगे। मज़राटी लेकर आए हैं फ्रेश मिल्क, चीज, योगर्ट, लाबने, एग्स और ये करेंगे आपके बच्चों के ब्रेकफास्ट से लेकर उनके लंच बॉक्स तक का सारा सॉल्यूशन। और आफ्टर स्कूल जब वो लौटेंगे तो उनके स्नैक्स के लिए भी आप मज़राटी के फ्रेश प्रोडक्ट्स को यूज कर सकती हैं एंड उनकी लाइफ में न्यूट्रिशन के साथ साथ उनको डिलीशियस फ्लेवर भी दे सकती हैं। सो गो एंड ट्राई मज़राटी के ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपको हर स्टोर पर मिल जाएंगे एंड आपके बच्चे कहेंगे वाओ मम्मी सब कुछ सुपर टेस्टी बना है। वैसे मस्तमौला गौरव आपके साथ है तो बच्चों यही कहूंगा बड़े ही लकी हो, हमारे दौर में जो मिल जाता था हम वो खा लेते थे लेकिन आपकी मम्मी आपकी सारी रिक्वेस्ट को मानती हैं और खुद घर में मास्टर शेफ बन जाती है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: वाला है
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
2: नेशनल प्लानिंग काउंसिल जो है कतर की NPC, उन्होंने कतर के ग्रीन फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट शेयर किया है और थर्ड नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी NDS3 और कतर नेशनल विजन 2030 के तहत कतर पूरी कंट्री में एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनर्जी कंजम्पशन कम करने की बात हो रही है, बल्कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है उसको रीइन्वेंट करने की बात हो रही है, यानी कि एडवांस कार्बन कैप्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और लो कार्बन फ्यूल्स के साथ कतर अपने नेशनल विजन 2030 को अचीव कर रहा है। कतर के ग्रीन फ्यूचर को और कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर काम हो रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे कतर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी तेजी से इलेक्ट्रीफाई हो रहा है और क्लीनर अर्बन ट्रांजिट के लिए बिल्कुल तैयार है। टारगेट यह है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का 70% तक रिडक्शन किया जाए और सस्टेनेबल रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन के तहत इसको किया जा रहा है, प्लस 30% लैंड और मरीन एरियाज को प्रोटेक्टेड रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए किया जा रहा है। यानी कि बॉटम लाइन यही है सर, कतर अपने ग्रीन फ्यूचर के लिए एक्शन ले चुका है और उस पर तेजी से काम हो रहा है, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे हमें दिखाई पड़ने लगेगा एंड दिख भी रहा है। बस उम्मीद यही कीजिए कि हमारा और आपका फ्यूचर ऐसे ही ग्रीन बना रहे और कतर की हर स्ट्रेटजी जो भी मूव वो ले वो एकदम राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ता रहे। 89.6 मिर्ची वन इट्स आउट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: हमारा आपका भी रिश्ता पुराना हो गया 5.5 साल से ज्यादा। जब रिश्ता इतना पुराना हो जाता है तो फॉर्मेलिटीज भी कम हो जाती है। आइए जी एक साथ मिल बैठ कर घड़ी का टाइम मिला लें, 7:05 होने को आ रहे।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अब तारीख पर तारीख नहीं, सही तारीख पर सैलरी मिलेगी।
2: #974
0: हाँ जी, क्या हालचाल कतर में सुन रहे सभी भाइयों को और बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये न्यूज आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। हमारे कतर में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने नया ऑफिशियल गैजेट जो है इशू कर दिया है, जिसमें वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के रूल्स अमेंड हो गए हैं। यस, यानी कि बदलाव आए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डॉक्टर अली बिन शामिक अल मर्री साहब ने डिसीजन के मुताबिक ये कहा है कि अब एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स की जो सैलरी है उनके ड्यू डेट के 7 दिनों के अंदर दे देनी है, उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी ही पड़ेगी। और तो और मंथली वर्कर्स को हर कैलेंडर मंथ के पहले दिन वेजेस मिलेंगे और बाकी वर्कर्स के लिए हर 2 हफ्ते के पहले दिन पेमेंट शेड्यूल कर दी जाएगी। ये रूल पूरे कतर में इमीडिएट यानी कि आज से ही लागू हो गया है। तो भाई कुल मिलाकर अब सैलरी तारीख पर आएगी, तारीख पर तारीख फाइनेंस टीम नहीं दे पाएगी। इसी उम्मीद में कि आपकी और हमारी सैलरी तो सही टाइम आती है, बाकियों की भी आती रहे। मस्त मोलो गौरव आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि मैं उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या लगी?
3: अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी थी?
3: ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलू?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: मैं ना एक लड़की के लिए इस गाने को थोड़ा बदलता हूँ। ये लड़की है सुहानी है सयानी,
1: मस्त मौला मस्त मौला गौरव मस्त मौला गौरव।
0: यस, बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली दी मेंटलेस वानिशा कमिंग टू कदर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। और तैयार हैं हम भी इनके इस्तकबाल को, अपने अपनी तरह से सब तैयारी कर रहे हैं कि कैसे ये हमारे माइंड को रीड ही ना कर पाए। लेकिन ट्रस्ट मी शी इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और हमारी जब पूरी टीम हम लोग बैठे थे उस दिन, तो हम यही बात कर रहे थे कि यार करती कैसे है ये बंदी। इनफैक्ट हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं पर नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे। सुहानी से कुछ तो सीखना पड़ेगा। हम उसे प्रॉमिस कराएंगे कि सुहानी जब आप आएंगे तो हमें एक छोटा ट्रिक तो सिखाइएगा कि कम से कम किसी महफिल में जाएं तो बोल दे रहे यार सुहानी आई थी ना, तो हम लोगों से स्पेशल एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन करके हम को बताया था। लेकिन फिलहाल रूबरू होकर उनकी ये सारे मैजिक को देखना है, इनके सारी ट्रिक्स को देखना है, माइंड रीडिंग के इस पूरे आर्ट को देखना है। तो आप जितनी जल्दी हो सके किसी भी लीडिंग प्लेटफॉर्म टिकट पर जाइए, जहां पर आपको टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर ये टिकट मिले जल्दी से बुक कीजिए। एस सिटी स्नूनू पर आपको फायदा होने वाला है। एंड इतने नहीं, कॉर्पोरेट्स एंड एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। ये सब कुछ मिर्ची पर आपको मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए एस सिटी स्नूनू पर 30 कतारी रियाल का कैशबैक, उसका फायदा उठाइए। इस वीकेंड बैठकर दोस्तों यार के साथ प्लान फिक्स कर जितने लोग हैं सबकी टिकट्स बुक कर लो भाई। आई एम टेलिंग यू इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस जो इससे पहले आपको कभी नहीं मिला है। यस, द मेंटलिस्ट वानिशा लाइव इन कतर। एंड बस इतना ही कहना चाहता हूं, एक ऐसी खूबसूरत महफिल जो गाने और डांस से भी सजेगी, क्योंकि सिंगर चरण आसी डांस करेंगी। एंड आई एम श्योर ये कमाल की शाम होगी। 25th ऑफ सितंबर सबको याद रहेगी, 22 दिन दूर खड़े हम। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव ने याद दिला दिया है। आप अपना काम कर लो, के साहब अपना काम करने आए हैं। प्यार के पल मिर्ची, इट्स हॉट।

अगर आप ये कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से दुनिया के आयरन मैन मेरे लिए आप ही हैं। अरे यार, मैं बात कर रहा हूँ उस वर्ल्ड ट्रायथलन चैंपियनशिप की, जो एक बार फिर से लगातार दूसरे साल हमारे कतर में होने जा रही है। यस, कतर T100 ट्रायथलन वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल दिसंबर 10 टू 12 हमारे कतर में होने जा रहा है। कह सकते हैं एक दमदार स्पोर्टिंग इवेंट जो दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स को हमारे यहां कतर में लेकर आता है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल हमारे कतर में होगा और कतर T100 ट्रायथलन के लिए इस बार एक बड़ा सरप्राइज है। यस, सरप्राइज ये है कि हम और आप भी अब अपनी टीम बनाकर 100 किलोमीटर या स्प्रिंट डिस्टेंस में कम्पीट कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इसका बड़ा ही सिंपल हिसाब किताब है। पहले 2 किलोमीटर की स्विमिंग होगी इन अरेबियन गल्फ, उसके बाद 80 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी होगी एंड लास्ट 18 किलोमीटर रन करकर लुसेल प्लाजा बॉलोवर्ड में आपको फिनिश करना होगा। कुल मिलाकर दुनिया भर से 5000 से भी ज्यादा एथलीट लास्ट टाइम आए थे। इस बार क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। वैसे हम कहते हैं ये तो T100 ट्रायथलन है, लेकिन अगर खाने पीने की 3 कोर्स की कोई रेस हो तो बताइए, हम उसमें इतना जबरदस्त तरीके से खाएंगे पिएंगे कि टॉप 5 में तो हम आ ही जाएंगे और क्या पता सिल्वर या ब्रॉन्ज भी आ जाए। नहीं, इतना भी नहीं खा सकते कि गोल्ड जीत पाए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

हौली हौली गिद्दे बीच नच पतलोनी, तो गिद्दे पे नच रही है, हम आपके साथ अब कट रहे हैं। मस्त मौला गौरव। भाई सुबह से कब हो जाती है शाम, रहते ही नहीं इस बात का ध्यान कि घर जाएंगे, करेंगे हम भी थोड़ा आराम। वो टाइम आ जाता है जब मैं आपको करता हूँ टाटा बाय प्रणाम एंड अपनी वाणी को थोड़ा सा देता हूँ विराम, तो लौटेंगे एक बार फिर से कल शाम को शानदार बनाएंगे। आजकल बैक ऑफिस में काम बहुत चल रहा है। हाँ भाई, हमारे यहाँ जब कोई इवेंट आता है ना तो वो किसी शादी ब्याह के घर से कम नहीं हो रहा होता है। लगातार हमारे बैकग्राउंड में हम काम पे काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए टिकट्स कैसे करनी है, कैसे बैजेस लगाने हैं, कैसे टैग्स लगाने हैं, क्या स्टेज के पीछे होगा, क्या स्टेज के सामने होगा, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट, हमारा पूरा मिर्ची परिवार लग जाता है आपकी आओ भगत के लिए। एंड ऐसी तैयारी हम कर रहे हैं, आप अपनी बस तैयारी कर लो, टिकट खरीद लो। हाँ जी, हम आपको बता दें एस सिटी स्नोनू पर आपको 30 कतारी रियल का कैशबैक मिल रहा है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी टिकट मिले आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा भी सारे प्लेटफॉर्म टिकट्स पर आपको ये टिकट्स अवेलेबल हैं। मौके का फायदा उठाइए, प्राइजेज हमने अभी तक आपके लिए एकदम फिक्स करके रखे हैं अर्ली बर्ड वाले स्टेज के। जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर लो, क्योंकि धीरे धीरे अब एक एक दिन बीतते बीतते 25 तारीख पास आ रही है। ऐसा लग रहा है हमने तो तैयारियां शुरू कर दी, बस आपकी तैयारी यही बात से हो जाएगी कि आपने टिकट खरीद लिए। उम्मीद है टिकट खरीद रहे हो, अपने दोस्तों यारों को भी साथ में लेकर आ रहे हो, फिर मौज मस्ती धमाल होगा। क्योंकि द मेंटली सुहानी से अकेले नहीं आ रही, उनके साथ सिंगिंग एंड डांस, हाँ जी ये भी आ रहा है, क्योंकि सिंगर चरण एंड डांसर राशि दोनों के दोनों परफॉर्म करेंगे एंड कतर में इस पूरी शाम को यादगार बना देंगे। आप अपनी टिकट्स बुक करते रहो, मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि कल भी याद दिलाऊंगा। फिलहाल ले रहा हूँ अलविदा, लौटूंगा कल शाम एक बार फिर से। तब तक ले हबीबी मां सलामा मिर्ची हरारा खतीर, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, only on Mirchi. It's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check.
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और इस्तकबाल है हमारे आज के शो में। और शुरुआत करी जाए खुशबीर सिंह शाद साहब के शेर से। और हुआ क्या, रिसेंटली एक कोई शख्स हैं जिनसे हम एक समय पे ताल्लुक रखते थे और वो हमसे टकरा गई किसी प्रोग्राम में, और अचानक से हमारे जहन को जो उनके चेहरे पे एक आश्चर्य था हमें देखकर, उससे हमारे जहन में ये शेर आया। खुशबीर साहब कहते हैं कि रेजा रेजा कर दिया जिसने मेरे एहसास को, रेजा रेजा मतलब रेशा रेशा टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा कर दिया जिसने मेरे एहसास को, किस कदर हैरान है मुझको वो यकजा देखकर। एकदम अचानक से सामने देख के कैसे हैरान हो गया है वो शख्स। एंड आई थिंक उर्दू अदब की, आई थिंक पोएट्री की यही ब्यूटी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटनाएं होती हैं उसको आपके सामने इतनी खूबसूरती से पेश किया जाता है कि आपका दिल खुश हो जाता है उसे पढ़ के, है कि नहीं। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। अगर मुझसे कुछ बात करना चाहे तो आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nabil bala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
2: Thank you.
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
2: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
3: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
2: परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
2: लगी हुई गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो.
3: कच्चा
2: धागा.
3: रेस
2: लगा लो.
3: दस
2: पत्ते तोड़े.
3: एक
2: पत्ता कच्चा.
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े. या मिस्टर श्रीवास्तव,
2: दस पत्ते तोड़े.
3: हिरण का बच्चा. हिरण का बच्चा. सब हिरण का बच्चा.
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
3: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू.
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू.
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को. मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
2: यार ये कोई सुनेगा
3: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के शायर सैयद जानिसार हुसैन रिजवी उर्फ जानिसार अख्तर साहब से। प्रगतिशील आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे, प्रमुख शायरों में शामिल किए जाते हैं जिन्होंने इश्किया शायरी को नए यथार्थ बोध से परिचित कराया। फिल्मों के विख्यात गीतकार रहे, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पढ़ाई करी, तालीम मिली इन्हें ग्वालियर और भोपाल में पढ़ाई के साथ, फिर मुंबई में कायम हो गए, काम करने लगे। मशहूर क्लासिकी शायर मुज़्तर खैराबादी इनके पिताजी थे और मशहूर फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर साहब इनके बेटे हैं। उनकी एक बहुचर्चित गजल है जो मेरी भी बड़ी पसंदीदा है, सुनाता हूं आपको। लिखते हैं कि अशार मेरे यू तो जमाने के लिए है, अशार मतलब लफ्ज, अशार मेरे यू तो जमाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। और देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए है। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। हाय हाय, अब आप जानते हैं कि फरहान अख्तर और जोया अख्तर की हेरिटेज क्या है। नो वंडर उनका भी काम इतना बेहतरीन है। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और आदिल हेरा साहब का एक शेर पढ़ा और मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि जिंदगी में कैसे पिताजी जो कहते थे कि पहले अपने बनो फिर दूसरों के बनना, जिंदगी में आपका साथ हर कोई, रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, हर कोई छोड़ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आदिल हेरा साहब लिखते हैं कि क्या जरा सा वक्त बदला सबने आंखें फेर ली, क्या जरा सा वक्त बदला सबने आंखें फेर ली, बेबसी पर मुस्कुराते हैं मेरे अहबाब देख। अहबाब मतलब नियर एंड डियर वंस। क्या जरा सा वक्त बदला सबने आंखें फेर ली, बेबसी पर मुस्कुराते हैं मेरे अहबाब देख। इसीलिए दोस्त, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें, अपने आप की, अपने परिवार की फिक्र सबसे ऊपर रखें, एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। बने रहें अपने ताशी के साथ। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी करे आज का ताशी अनप्लग्ड आपको नजर और ये जो नगमा है दोस्त ये गजल और नगमे के बीच में एक जो जगह होती है ना वहां एग्जिस्ट करता है। 2024 में रिलीज हुआ ये नगमा दिव्यम सोधी और ख्वाब का हाले दिल करके एक एल्बम आया उसका है एंड आई एम सिंगिंग इट जस्ट फॉर यू। इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स। इट्स कॉल्ड कैसे कह दें कि वो हमारा है।

उम्मीद है आपको ये नगमा पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही और नगमे आप सुनना चाहते हैं, गजलें आप सुनना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6
0: मिर्ची।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

सोचो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम्हारा एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हाँ, उसमें तुमने अपनी यू नो तन मन धन सब लगा दिया हो, एंड देन देयर इज अ प्रोजेक्ट जो तुमने ऐसे ही साइड में कर लिया, टाइम पास के लिए कर लिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो तुम्हारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट फेल हो गया और जिसको तुम टाइम पास समझ रहे थे वो हिट हो गया। सो एक्चुअली में ऐसा हुआ था बच्चन साहब के साथ। कौन सी फिल्म थी वो अभी बताऊंगी आपको, जो उन्होंने ऐसे टाइम पास सोच करके कर दी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार, क्योंकि अब स्टूडियो में आ गई है आपकी प्यारी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, लेकिन इस जमाने की श्रेया के साथ। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज?
4: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा,
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: तू चोरी करने ले गया?
4: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
3: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
4: मेरी बात सुन,
3: तू मुझे मरवाएगा। मुझे फोन कर दिया।
4: मेरी बात सुन।
3: हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: अब ठीक है।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
7: it's hot.
8: The show was absolutely amazing.
9: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज़ ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
10: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आपू श्रेया के साथ। और आज ना एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जो बच्चन साहब की ऐसी टाइम पास फिल्म थी। इस फिल्म को उन्होंने रोज एक घंटे सुबह बस इतना ही टाइम दिया था एंड ही थॉट कि ये फिल्म कुछ खास करने नहीं वाली है। Meanwhile, he was shooting for a very, very ambitious picture. वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई लेकिन ये पिक्चर हिट हो गई। हाँ जी, तो ये हुआ था फिल्म याराना के साथ। तो होता ये है कि इस फिल्म के लिए ना भाई, जब राकेश कुमार who was the director of the film, वो बच्चन साहब के पास आए, बच्चन साहब ने उन्हें साफ मना कर दिया कि उनके पास डेट्स ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उन डेट्स पे सिलसिला मूवी को शूट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब वो बच्चन राकेश कुमार बच्चन साहब के सेट के और स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे, तो एक दिन उनको टेबल पे बच्चन साहब की अपॉइंटमेंट डायरी दिख गई। उस डायरी में उन्होंने देखा कि सुबह 8 बजे के पहले बच्चन साहब फ्री हैं। अब उन्होंने कहा भाई ये डेट्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सुबह 8 बजे का टाइम तो हर डेट पे अवेलेबल है। तो वो बच्चन साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि बस आप इतना कर दीजिए कि रोज सुबह 7 से 8 ओनली 1 आवर एवरी डे इतना मेरी फिल्म याराना को दे दो। बच्चन साहब को भी लगा कि 1 घंटे में क्या हो जाएगा, चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, मैं थोड़ा और जल्दी सुबह उठ जाऊंगा। बच्चन साहब ने वो 1 घंटा दिया। याराना पूरी पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ इस 1 घंटे में शूट हुई थी, 7 to 8 AM इन द मॉर्निंग। और जब सिलसिला और याराना रिलीज हुई, सिलसिला में जहाँ पे उन्होंने बहुत ढेर सारा काम भी किया था, एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई थी ये पिक्चर याराना। इसकी बड़ी सारी बातें मेरे पास, कम राइट बैक। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दिस शो वाज एब्सोल्युटली।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगर बच्चन साहब सेट पे कुछ डिमांड कर देते थे तो वो होना ही होना था। ऐसा कोई नहीं था सेट पे जो हम तुम्हारे बाप हैं की बात ना सुने। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड ऐसे ही कुछ हुआ मूवी याराना के सेट पे। सो होता यह है कि नीतू सिंह की ना उसी समय शादी होती ऋषि कपूर से, एंड शी वाज मिसिंग हिम। तो जब उन्होंने कॉल करने की कोशिश की तो वहां पे ना ढेर सारी बारिश होती है कोलकाता में, एंड इसीलिए नेटवर्क उस टाइम पे वैसे भी बहुत प्रॉब्लमैटिक होते थे, नेटवर्क नहीं होता है। तो उनकी 3 दिन तक ऋषि कपूर से बात ही नहीं हो पा रही थी। याराना के गाने के लिए शूटिंग हो रही थी कोलकाता के स्टेडियम में, एंड सडनली नीतू सिंह स्टार्टेड क्राइंग जोर जोर से। बच्चन साहब उनके पास गए और उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उन्हें पता चला कि उनको अपने पति ऋषि की बहुत याद आ रही है और प्रोड्यूसर जो है ना वो उनको छुट्टी नहीं दे रहे। प्रोड्यूसर का कहना था कि भाई सेट पे बहुत सारा पैसा लगा है तो हीरोइन अभी नहीं जा सकती। बच्चन साहब ने फौरन प्रोड्यूसर साहब को बुलाया और कहा कि नीतू की अभी टिकट होगी ASAP। मुंबई की टिकट हुई, नीतू सिंह 2 दिन की छुट्टी लेकर के गई और वापस आ गई। वो पूरा गाना जो है ना उसमें बस थोड़ी देर के लिए नीतू सिंह दिखाई गई हैं, एंड रेस्ट द एंटायर गाना वाज पिक्चराइज्ड ऑन अमिताभ बच्चन। याराना फिल्म का एक गाना इसी बात पे कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
4: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी की शूटिंग हो रही थी, नाम था मूवी का गंगा की सौगंध, और यहीं पे सेट पे खड़े सब लोगों को कुछ कुछ अंदाजा हो गया। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन्स वीक उस जमाने की कुछ रेट्रो आइकॉनिक लव स्टोरीज के साथ। सो अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी की डेफिनेटली बात हो रही है। एंड हुआ ये कि जब आप किसी से बेहद प्यार करते हो, अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव करे तो भाई आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद बच्चन साहब। सो दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो चुकी थी मूवी दो अनजाने के सेट पर, लेकिन ये किसी को नहीं पता था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि रेखा जी जो थी ना, वो एक बंगलो में मिला करती थी, ये उनके दोस्त का बंगलो हुआ करता था बच्चन साहब से। फिर एक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई गंगा की सौगंध, और इस फिल्म के दौरान रेखा जी से उनके एक को स्टार ने ना बहुत रूडली बिहेव किया। बच्चन साहब को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको कस के झटक दिया। फिर क्या, वहां मौजूद सारे कास्ट क्रू को पता चल गया था कि कुछ तो चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ बताऊंगी आपको। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
2: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: दिखाता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

सबकी बच्चन साहब को अमित बुलाने की इतनी आदत थी कि कई बार तो लोग अपने डायलॉग्स भी कैरेक्टर नेम देने की जगह अमित दे देते थे। पुरानी जीन्स भी आपको श्रेया के साथ आज याराना फिल्म की बात हो रही है। नीतू सिंह के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही थी। याराना फिल्म में बच्चन साहब इज पेयर्ड ऑपोजिट नीतू सिंह। अब होता ये है कि अमित उनका जो निक नेम था ऑन द सेट, सब उन्हें प्यार से फॉन्डली अमित अमित करके बुलाते थे। नीतू सिंह जब जब अपनी लाइन्स बोल रही थी ना, तो उनका कैरेक्टर नेम जो कि था किशन, उसको भूल करके अमित बोल जाती थी। एंड दैट हैपेंड रिपीटेडली। इनफैक्ट मतलब एक जगह है जहाँ पे उनकी फर्स्ट लाइंस है, जैसे ही फिल्म खुलती है, देखो किशन कोई आ गया है। और उन्होंने पता है कम से कम 12 रीटेक्स के बाद इस वर्ड को किशन को बोल पाई थी वो, क्योंकि बार बार वो कह रही थी देखो अमित कोई आ गया है। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी उस जमाने की बातें उस जमाने के गानों के साथ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको भी मुझे कुछ बोलना है या फिर किसी तरह की शिकायत है, देन ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू मी फेसबुक और इंस्टा पे। मेरा हैंडल है RJ Shreya with Love, that's RJ SHREYA with Love।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत।
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का मतलब, मुझे ये भी नहीं
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या
5: बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डायरेक्टर राकेश कुमार जिन्होंने याराना बनाई विद बच्चन साहब, वो चाहते थे कि एक और फिल्म बने। इस फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फिल्म का नाम होना था चार्ली। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आज ना याराना की बात हो रही है। सो बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रही ये फिल्म। इनफैक्ट सिलसिला जिससे ज्यादा उम्मीदें थी, ये दोनों कुछ कुछ आसपास ही रिलीज हुई थी, सिलसिला बॉक्स ऑफिस पे धड़ाम हो गई, बट याराना डिड वेरी वेल। सो हुआ ये कि राकेश कुमार ने फिर बच्चन साहब को पटा लिया कि एक और फिल्म साथ में करेंगे और वो होनी थी चार्ली। इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी, कास्ट सेट हो गई थी, अमिताभ बच्चन वाज गोइंग टू बी पेयर्ड विद पद्मिनी कोल्हापुरी, लेकिन बीच में हो गया एक अनफॉर्चुनेट हादसा एंड दैट वाज कुली। कुली पे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो बच्चन साहब वॉज बेड रिडन एंड हॉस्पिटलाइज्ड, ऑल ऑफ दैट हैपेंड। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि राकेश कुमार ने एक और पिक्चर बनाई और उस पिक्चर का नाम था कौन जीता कौन हारा। क्योंकि राकेश कुमार बच्चन साहब को अपने लिए लकी चाम मानते थे, तो अमिताभ बच्चन ने इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी और कुली की इंजरी से रिकवर करने के बाद इस मूवी में स्पेशल अपियरेंस दिया ओनली फॉर हिज डायरेक्टर। पुरानी जीन्स में ना बहुत सारी बातें होती है मेरे पास शेयर करने की, लेकिन हाँ इस जमाने की नहीं, उस जमाने की। सिर्फ मैं हूँ इस जमाने की। एंड इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, कुछ कहना है, कुछ लिखना है, तो आरजे श्रेया विद लव इस नाम से हूँ फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर क्या बच्चन साहब ने अपनी फेवरेट रेखा जी को बुला लिया। पुरानी जीन्स पे या फिर श्रेया के साथ याराना फिल्म की बात हो रही है। अब ये वही टाइम था जब नीतू सिंह, जो इस फिल्म की हीरोइन थी ऑपोजिट अमिताभ बच्चन, उनकी नई नई शादी हुई थी ऋषि कपूर से। वो ऑलरेडी ऋषि कपूर को बहुत मिस करती थी सेट पे, तो एक बार तो बच्चन साहब ने प्रोड्यूसर से लड़ करके बीच शूटिंग के दौरान उनको मुंबई वापस भिजवा दिया कि भाई ऋषि से मिला और वापस आओ। लेकिन डबिंग के लिए उनकी अनअवेलेबिलिटी काफी टाइम तक रही, ऐसे में मूवी रिलीज ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर अमिताभ बच्चन ने क्या किया, उन्होंने अपनी फेवरेट रेखा जी को बुलाया। रेखा जी ने आधी फिल्म में नीतू सिंह के लिए डबिंग की है, तो अगर आप ये फिल्म देखोगे ना, आपको आधी फिल्म से नीतू सिंह के डायलॉग्स जो हैं वो रेखा जी की आवाज में सुनने को मिल जाएंगे। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की जम करके बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं आप और मैं मिलके। सो कम बैक राइट हियर। मेरा नाम है श्रेया।

इस एक फिल्म की वजह से अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब में हमेशा के लिए एक दरार पड़ गई थी। पुरानी जीन्स पे आपू श्रेया के साथ और आज ना याराना फिल्म की गप्पे मार रहे हम लोग। सो होता ये है कि याराना और सिलसिला एक ही साथ शूट होती है, मतलब ऑलमोस्ट यू नो एक ही टाइम पे शूट हो रही होती है, लेकिन सिलसिला पहले कंप्लीट हो जाती है। सिलसिला के कंप्लीशन के बाद बच्चन साहब को जाकर के ना अपने डायलॉग्स की डबिंग करनी होती है। बच्चन साहब हमेशा से अपने डायलॉग्स हमेशा से फटाक से डब कर देते थे, वो नहीं चाहते होते थे कि भाई किसी भी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो। तो सिलसिला में वो कुछ अलग करने लगे थे। सिलसिला में पहले उन्होंने 1 घंटे की डबिंग शुरू की और उसके बाद वो हर डबिंग को कैंसिल कर देते। यश चोपड़ा साहब तक ये बात पहुंची, उन्होंने कुछ महीने छोड़े, फिर उसके बाद 1 साल छोड़ा और फिर जब इस मूवी को सिलसिला को 2 साल लग गए सिर्फ डबिंग के चक्कर में, उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने जाकर के बच्चन साहब से बात की तो उन्हें पता चला कि बच्चन साहब जो थे वो याराना के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि सिलसिला और याराना की रिलीज क्लैश हो। आगे एक और रीजन दिया गया है कि क्यों अमिताभ बच्चन सिलसिला की डबिंग पे नहीं पहुंचते थे। अभी आपको बताऊंगी एक और कहानी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूं श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची।

एक थियोरी का ये भी कहना है कि अमिताभ बच्चन ने रशेस देख लिए थे मूवी सिलसिला के और उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी, इंडियन ऑडियंस को ये मूवी अच्छी नहीं लगेगी और इसीलिए वो चाहते थे कि याराना की रिलीज पहले हो जाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसने यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन जिन्होंने कई सारी फिल्में एक साथ की थी उन दोनों की दोस्ती में दरार ले आई थी। इस फिल्म का नाम था याराना। सो होता यह है कि सिलसिला खत्म हो जाती है और सिलसिला की रिकॉर्डिंग जो थी ना वो बाकी थी, एज इन डबिंग बाकी थी। अमिताभ बच्चन का ये रिकॉर्ड था कि वो अपनी डबिंग, अपने डायलॉग्स फटाफट बोल करके ना मूवी को कंप्लीट कर देते थे, लेकिन सिलसिला के रिलीज पे, सिलसिला की डबिंग पे वो पहुंच ही नहीं पाते थे। कई बार उन्होंने कैंसिल किया, कई बार वो सिर्फ एक एक घंटा स्टूडियो आते। यश चोपड़ा साहब पहले तो दोस्ती के नाम पे इसको लेट गो करते रहे। उसके बाद फाइनली एक दिन यश चोपड़ा साहब को पता चला कि बच्चन साहब जो याराना की शूटिंग साइमल्टेनियसली कर रहे थे वो याराना के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और इसलिए वो चाहते थे कि याराना फिल्म पहले रिलीज हो जाए। बच्चन साहब का ये कहना था कि वो सिलसिला के रशेस देख करके पहले ही समझ गए थे कि मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी और इसीलिए वो चाहते थे कि भाई एक फ्लॉप फिल्म उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म के पहले ना आए, एंड दैट्स व्हाई यू वांटेड कि याराना पहले रिलीज हो जाए। वेल, इन सब चीजों की वजह से उन दोनों ने उसके बाद कभी काम नहीं किया, यश चोपड़ा एंड अमिताभ बच्चन। इनफैक्ट तब तक काम नहीं किया जब तक बच्चन साहब ने खुद जाकर के मोहब्बतें में यश चोपड़ा से काम नहीं मांगा। पुरानी जीन्स पे इस फिल्म याराना की और भी बातें, कम राइट बैक। मैं हूं श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कोलकाता का भरा हुआ स्टेडियम, 20,000 की पब्लिक एंड बच्चन साहब का ये डांस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज ना याराना फिल्म के गप्पे मार रहे हैं हम लोग। सो बच्चन साहब ने जब ये गाना सुना, सारा जमाना, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन जब उनको कॉस्ट्यूम मिली तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ही सेड कि गाना इतना वाइब्रेंट है, इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें मेरी कॉस्ट्यूम एकदम फ्लैट लग रही है। तो इस कॉस्ट्यूम में अगर आप ये गाना देखो तो बल्ब्स लगे हुए हैं एंड बल्ब्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। ये जो आइडिया था ना, ये क्रिएटिव आइडिया अमिताभ बच्चन ने खुद दिया था ऑन द सेट कि इसमें बल्ब्स लगाओ और उन बल्ब्स का जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो मेरे हाथ में दो, जो कि इनविजिबल होना चाहिए। एंड ही सेड कि मैं बीट्स के अकॉर्डिंगली इसको ऑन ऑफ करूंगा। हाउ क्रेजी। अच्छा, जब शूटिंग खत्म हो गई ना इस गाने की, तो क्या हुआ ये भी बताऊंगी आपको। फिलहाल यही गाना सारा जमाना, कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: The show was absolutely amazing.
2: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सोचो आपको निकल के भागना हो और फैंस को पता चल जाए कि आपकी गाड़ी खराब हो गई हो, और कुछ 100 की तादाद में फैंस नहीं, 20,000 फैंस। पुरानी जीन्स पे आफू श्रेया के साथ और आज गप्पे मार रहे हम लोग मूवी याराना के। तो गाना है ना सारा जमाना, ये कोलकाता के एक स्टेडियम में शूट हो रहा था इन फ्रंट ऑफ 20,000 लाइव पब्लिक। और बच्चन साहब ने खुद अपने व्लॉग में बताया है कि भयानक पुलिस फोर्स उस समय वहाँ पे डिप्यूटेड थी कि वो फैंस को रोक पाए। भाई किसी तरह गाने को रिकॉर्ड किया गया, शूट किया गया, ये सब हुआ। और उसके बाद बच्चन साहब और नीतू सिंह गाड़ी में बैठ करके बस निकलने ही वाले थे कि उनकी गाड़ी फैंस के बीच में ही रुक गई। सो बच्चन साहब सेड ऑन द व्लॉग कि पुलिस फैंस को रोक रही थी पर वो रुक नहीं रहे थे, दोनों थोड़े स्केर्ड भी थे, अमिताभ बच्चन एंड नीतू सिंह। बट आपको पता है उनके फैंस ने क्या किया? जैसे ही उन्हें पता चला कि अमिताभ बच्चन की गाड़ी आगे नहीं चल रही है, फैंस ने एक्चुअली गाड़ी को लिफ्ट कर लिया और लिफ्ट करके उनको होटल के अंदर तक पहुँचाया। दिस इज क्रेजी है ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, उस जमाने के किस्से बहुत सारे ढूंढ के लाती हूँ। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
4: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
3: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी लेट्स हिट द हाईवे। देखो आज का मेरा हाईवे हिट ना, एक्चुअली में ये गाना ट्रम्प कार्ड है। ओके, अगर आपको अपनी महबूबा की तारीफ करनी है तो इससे बेहतरीन गाना नहीं हो सकता, जो कि रफ़ी साहब ने गाया है कि मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे चांद सा हंसी, चांद ने कहा नहीं नहीं नहीं। लेट्स हिट द हाईवे। देखो आज का मेरा हाईवे हिट ना, एक्चुअली में ये गाना ट्रम्प कार्ड है। ओके, अगर आपको अपनी महबूबा की तारीफ करनी है तो इससे बेहतरीन गाना नहीं हो सकता, जो कि रफ़ी साहब ने गाया है कि मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे

0: एक पके माटी के पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित उष्ण पर प्रधान हो तो काकशेष्टा बकोना ध्यान और स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

विचार बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।